आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है बुधवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए

0: श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र में। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

चिंतन, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, झरोखा। सुनिए विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 222। गज तत्वाद्य संगीत सरिता में चल रही है ये श्रृंखला। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। आज इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में सुबह 10 बजे अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों

में एक बजे सुरीला सफर, दिन में दो बजे त्रिवेणी, 2:15 पर दोपहर समाचार, दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

बजे सखी सहेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, इस पर चर्चा, डायरी लिखने की आदत, साड़ियों का संसार, आज बांधनी साड़ी की बातें होंगी, शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है प्रोत्साहन। आज का कार्यक्रम ममता सिंह और मंजरी वर्मा के साथ, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका मेनू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी की है, रेडियो नाट्य रूपांतरकार मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद, 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित आज के फनकार, रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि

11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशलक्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशलक्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दान का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दान के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर

सुंदर मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक वोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने

0: पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिस्तरे की।

0: आइए सुनिए भूले बिस्तरे की गीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आज मौसी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, कम सुना गाना। मौसी फिल्म का एक गाना आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये
1: टिम टिम टिम तारों के दीप जले नीले आकाश तले।
0: लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज इस गाने से करते हैं, आशा भोसले की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का। ये फिल्म सन 1958 में आई थी।

0: नागमणी फिल्म का ये गीत गीत और रॉय की आवाज में था। प्रदीप जी की आवाज वाला संस्करण फिर कभी आपको सुनवाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा और संगीत अविनाश व्यास का था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम

0: देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो
3: विविध भारती से भूले बिसरे की।

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: फागुन फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। कमर जलाल आबादी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। अब कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक की बारी है, ब्रेक के उस पार कुछ और गाने हैं।

7:15 हुए हैं। आइए आपको बताते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से। 7:30 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश का। सुर संगम आप सुनेंगे 8:15 पर और 8:30 का समय होगा प्रणाम अयोध्या का। इसमें आज की बात का विषय है विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। साथ ही साथ भेंट वार्ता सुनिएगा अयोध्या एयरपोर्ट की शानदार यात्रा। वार्ताकार हैं श्री धीरेंद्र सिंह, निदेशक हवाई अड्डा अयोध्या। आपसे बातचीत की है आशीष चतुर्वेदी ने। 9:00 का समय होगा आपके संदेश आपके गीत का और 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। 11:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे। 11:55 पर विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 का समय होगा लोक रंग का। 1:00 कुछ तुमने कहा और 2:00 गीतांजलि। 2:15 का समय दोपहर समाचारों का होगा। 2:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना। इसमें चर्चा होगी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर। साथ ही सुनेगा फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला। 3:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का भाग। 3:30 से केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे आप। शाम 5:00 का समय होगा युववाणी का। इसमें चर्चा होगी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर। व्यक्ति विशेष में जानेंगे उत्कलमणि गोपा बंधु दास के बारे में। साथ ही खेल संसार की खबरों से होंगे रूबरू। 5:30 का समय लोक संगीत का। शाम सुहानी 6:10 पर और 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेनग्ले में लीड्स में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

10:45 पर पुनः आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। संदेशों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।

0: शुक्र। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए।

0: पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
3: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया और MBBS में कुल 1,28,900

0: 76 सीटें थी जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनर्परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर

22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

0: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
3: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
5: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
6: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
5: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
6: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
5: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
6: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।

0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYA AKASHVANI@

मुंबई की मधुर सरिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अमृत कलश के इस कार्यक्रम में हम पहला भजन श्री गणेश जी, जिनके नाम मात्र से शुभता का संचार होता है, जिनकी वंदना के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को ये भजन सुनाते हैं। साथ ही आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही है हमारे आकाशवाणी अयोध्या का स्थापना दिवस। दशकों से आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, संस्कृति, साहित्य और संगीत जनसेवा के माध्यमों से करोड़ों श्रोताओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा रही। ये केवल एक प्रसारण का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों और जन जन की आवाज को जोड़ने वाला सशक्त सेतु है। इस विशेष अवसर पर हम आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोताओं, कलाकारों, उद्घोषकों, कर्मियों और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश भगवान श्री गणेश की इस आरती के साथ।

पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करना, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपरा रही है। माना जाता है कि श्री गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, सुख समृद्धि तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो श्रद्धा और विश्वास भक्ति के भाव के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। एसपी बाला सुब्रमण्यम और शंकर महादेवन की

0: नियावद क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी

0: जिंदगी बने।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।

भोलेनाथ नीलकंठ त्रिपुरारी जाने किस किस नाम से हम भगवान शिव को जानते हैं। करुणा के सागर, त्याग तप और कल्याण के प्रतीक। श्रद्धा से इनका जो भी स्मरण करता है उसके लिए भोलेनाथ सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं।

जीवन में जब भी निराशा, भ्रम या अंधकार का अनुभव हो, तब ईश्वर की कृपा और विश्वास का दीपक हमें सही राह दिखाता है। इसी भावना को व्यक्त करता हुआ अत्यंत सुंदर ये

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण

0: का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं।

0: यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए इज कमिटेड।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल

0: खुशी व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
2: साल बेमिसाल
3: बधाई हो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल। और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पन की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
4: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मान।

आज का दिन हमारे लिए है बहुत ही खास, क्योंकि आज हमारा आकाशवाणी मना रहा है अपना स्थापना दिवस। आज 33 साल पूरे हो गए हमारे आकाशवाणी को। आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर बीते वर्षों की अनगिनत यादें मन के पन्नों पर स्वतः ही उभर आती हैं। इन्हीं यादों को शब्दों में पिरोती ही प्रस्तुत है ये खूबसूरत गजल चंदन दास की आवाज में। आकाशवाणी की सुनहरे स्मृतियों और खूबसूरत पल को इन शब्दों में पिरोते हुए

की बात जुबा तक आए ये भी आसान कहाँ, जज्बातों को अल्फाज मिल जाए ये भी आसान कहाँ। मोहब्बत की राह में ठहराव भी जरूरी है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।

0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरी कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर, जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
1: इसी साथ हमारा गीत गजलों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
2: प्रणाम अयोध्या।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
5: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
4: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
5: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
4: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
6: आपके संदेश,
7: संदेश से आते हैं
6: आपके गीत।
7: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
6: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
8: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
9: नहीं अछूता हो
8: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
0: 33 साल बेमिसाल।
7: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
0: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर।

प्रणाम। अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। दोस्तों, हमेशा हम अपने कार्यक्रम में कुछ

हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है, जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। दोस्तों, आज है विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। आज हम इसी पे बात करेंगे। हरियाली केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है, लेकिन बढ़ता मरुस्थलीकरण, घटते वन क्षेत्र, जल स्रोतों का सूखना और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि स्वस्थ भूमि ही स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य और समृद्ध समाज की नींव है। आइए हम सभी संकल्प लें कि जल के प्रत्येक बूंद का महत्व समझेंगे, वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे, अपनी धरती को बंजर होने से बचाने में अपना योगदान देंगे। धरती हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। आइए मिलकर ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हरियाली, जल और जीवन का संतुलन बना रहे। दोस्तों, आज का ये दिन मनाने का उद्देश्य भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे की गंभीर समस्याओं के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना तथा इनसे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उजागर करना है। यह दिवस भूमि प्रबंधन, पारिस्थितिकीय संतुलन और जलवायु अनुकूलन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि धीरे धीरे अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है और बंजर भूमि में बदल जाती है। इसके पीछे कई मानवीय और प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक चारगाही, वनों की कटाई, अनुचित सिंचाई, जलवायु परिवर्तन और भूमि का अत्यधिक दोहन। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, जिससे जल की भारी कमी उत्पन्न हो जाती है और कृषि, पशुपालन, जैव विविधता और मानव जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे और प्रकृति की देखभाल करेंगे ताकि कोई भी भूमि बंजर ना हो। इस नीले गगन के तले धरती का प्यार है।

आर्थिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91 16 76 47 46।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या आज विकास और आधुनिकता की ऊंचाइयों को छू रही है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ साथ अयोध्या अब एक आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना रही है। इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, जिसने अयोध्या को देश और दुनिया से जोड़ने में एक नई भूमिका निभाई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह हवाई अड्डा केवल यात्रियों की सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि अयोध्या के विकास और गौरव का प्रतीक बन चुका है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत विकास यात्रा की कहानी और सुनते हैं ये भेंट वार्ता अयोध्या एयरपोर्ट की शानदार यात्रा। वार्ताकार हैं श्री धीरेन्द्र सिंह, निदेशक हवाई अड्डा अयोध्या। आपसे बातचीत की है आशीष चतुर्वेदी ने।
1: किसी भी शहर का विकास तब होता है जब वहां पर मूलभूत सुविधाओं का आगमन होता है। अयोध्या, जिसको हम अब ये मान सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर हो गया है, प्राचीन काल से अयोध्या सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। रामायण काल में भी यहाँ पर कभी पुष्पक विमान उतरा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को यहाँ पर अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अयोध्या के इतिहास में ही नहीं वरन पूरे देश के इतिहास में या एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और अयोध्या का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो भारत के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट्स में से एक है और उसकी कमान संभाल रहे हैं धीरेन्द्र सिंह साहब, जिन्होंने अपने बहुत, अभी इनका कार्यकाल लघु है जिसको कह सकते हैं, छोटे कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। और सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अभी आपको ISDA का इंफ्राकॉन नेशनल अवार्ड भी मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसकी डिज़ाइन के लिए। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, हमारे शहर में अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आकाशवाणी के केंद्र पर भी बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। जैसा कहा आपने कि अयोध्या वासी, आपके श्रोता, उन सबको भी मेरा नमस्कार, आपको भी बड़ा मेरा सादर प्रणाम।
1: धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब कोई तीर्थयात्री आता है और तीर्थयात्रियों और टूरिज्म के विकास के लिए इस हवाई अड्डे की रूपरेखा रखी गई, जिसको मूर्त रूप 2023 में दिया गया, बहुत कम समय में इसका डेवलपमेंट हुआ
2: जी।
1: तो जब कोई यात्री आता है, तीर्थयात्री आता है
2: जी,
1: तो आपकी फीलिंग कैसे है? आप उसके हेड हैं एयरपोर्ट के, तो आपको कैसा एहसास होता है?
2: नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जब आप ऐसे एयरपोर्ट पे हैं और जहां आप अयोध्या की जब बात करें, यहां जो मंदिर है, जैसा हम कह रहे हैं कि ये रिलीजियसली अगर देखें तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका बड़ा महत्व है। और जब कोई देश विदेश से भी, नॉट ओनली कि सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बहुत लोग बड़ी भक्ति के साथ आते हैं, और हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब वो जहाज से उतरते हैं तो जमीन को प्रणाम करते हैं, छूते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं
1: जी।
2: तो बड़ा आदमी अपने आप को रोमांचित फील करता है। और उसी में निश्चित तौर पर, क्योंकि अब एयरपोर्ट के निदेशक के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि जितनी भी सेवा यहाँ पे हम लोग लिखी है, जितने दिन के लिए भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो अपने आप को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़े सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि यहाँ पे अयोध्या वासियों का और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी भक्त गढ़ आ रहे हैं उनका भी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात
1: जी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी एक मूल मंत्र है सेवा, हमारे जो ग्राहक हैं, जो यात्री हैं, उनकी सेवा। और एक निश्चित तौर पर यहाँ अलग एहसास होता है, जब फसाद ही देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी

0: में हम जा रहे हैं या वहां से बाहर निकल रहे हैं।
1: जी, जी।
0: जो ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या का, इसके बारे में बताइए, इसके कैसे विकास हुआ, इसकी क्या कहानी रही और इतने कम समय में इसको मूर्त रूप आपने आपकी टीम ने दिया।
1: जी देखिए, जब मंदिर बन रहा था तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एक बड़ा माइलस्टोन होता है उस चीज के लिए कि जब मंदिर तो बन जाएगा, इतना विशाल भव्य मंदिर बन रहा है और उस पे लोग पहुंचेंगे कैसे, तो रोड, रेल और वायु, यही तीन माध्यम होते हैं, जहाँ साधन है जिसके माध्यम से लोग पहुंच पाएंगे। और यह एक्सपेक्टेड तो था ही कि जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा तो बहुत भारी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आएंगे। और रेल का नेटवर्क तो था ही, रोड का भी था, लेकिन एक कमी जो थी वो एयरपोर्ट की थी। तो जब ये प्रधानमंत्री जी द्वारा या उनके विभाग द्वारा और सभी स्टेट की तरफ से भी ये सोचा गया कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट जो है बनाया जाए, तो यहाँ पे चूंकि हवाई पट्टी पहले से ही थी, अब बात थी कि समय की, क्योंकि जो समय था लगभग 2 साल से भी कम का समय था और इतने में कभी कोई एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ नहीं था, तो ये बड़ा एक जटिल समस्या थी कि इतने जल्दी एयरपोर्ट को बना के चालू करना, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि सुरक्षा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यात्रियों की, और उसमें कई सारे DGCA जो है रेगुलेटर है हमारा और BCS जो रेगुलेटर है, उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो मानक हैं, उनको पूरा करना 18 महीने या 2 साल में बड़ा डिफिकल्ट काम था। लेकिन चूंकि अब ये इतना पूरे देश का एक महत्व का एयरपोर्ट बन रहा था, तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी सोच के साथ इस पे काम किया और ये रिकॉर्ड समय में, जैसा आपको पता है कि लगभग 18 महीने में पूर्ण कर लिया गया, जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक इतिहास बन गया, कभी इतने कम समय में कोई एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ, और वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है हमारी। और आप देखेंगे तो बिल्डिंग को देख के लोग बड़ा प्रसन्न विभक्त हो जाते हैं और जो भी आता है उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मंदिर का, सेब दिया गया उस बिल्डिंग को, और अंदर जाके वो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब वहाँ की पेंटिंग्स देखता है। हमारे यहाँ पूरे रामायण की पेंटिंग्स का कहानी का पूरा चित्रण किया गया है, तो उनको देख के लोग अचानक अपने आप ही फोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं, और वही भाव के साथ वो वापस जाते हैं जिस भाव से वो आए थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। एयरपोर्ट में आप देखेंगे कि सभी सुविधाएं जो है लगभग इंटरनेशनल लेवल की हैं हमारे पास, और इसकी जो कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे जनरली RCS एयरपोर्ट के छोटे से एक एयरपोर्ट शुरू होते हैं, बट इसको थोड़ा पहले से ये समझ लिया गया था कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है, तो उसी तारतम्य में बहुत सारी एक्टिविटी अभी भी हम लोग कर रहे हैं और निर्माण भी कर रहे हैं।
0: और आपकी ये यात्रा, आपकी ये उड़ान, आपकी ये परवाज जारी है, वर्तमान स्थिति क्या है, कितने शहरों से कनेक्टिविटी है और कितने यात्री यहाँ पर आते हैं, प्रस्थान करते हैं?
1: देखिए, ये अभी हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या अभी कई शहरों से कनेक्टेड है डायरेक्टली। अयोध्या दिल्ली से कनेक्टेड है, अयोध्या आप अहमदाबाद से, गुजरात से कनेक्टेड है, अयोध्या मुंबई से कनेक्टेड है, अयोध्या साउथ में आप बात करें तो हैदराबाद और बेंगलोर से भी कनेक्टेड है, अयोध्या अभी हिसार से भी कनेक्ट हो गया है।
0: अच्छा,
1: ये आप देखेंगे कि कम से कम 6 या 7 डेस्टिनेशन से हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आप रीरूटिंग की बात करें तो कई जगह आप पूरे देश में अब अयोध्या से हवाई जहाज के माध्यम से पहुंच सकते हैं।
0: कितने यात्री आते जाते हैं?
1: लगभग अब हमारे यहाँ 2,500 से 3,000 यात्री पर डे आते हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जनरली समर में थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, एयरक्राफ्ट भी थोड़े से अभी कम हो जाते हैं, और विंटर में हमारे पास यही आंकड़ा जो है 4,500 से 5,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो यही इस तरीके से अयोध्या जो है कनेक्ट हो रहा है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ और एयरपोर्ट से इसको कनेक्ट किया जाए, कुछ और सिटीज से कनेक्ट किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी ईस्टर्न पार्ट जो है वो अभी रुका हुआ है, या कलकत्ता या नॉर्थ ईस्ट अभी कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं।
0: जी, तो लगभग 1 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी साल में आपकी है?
1: हाँ, लगभग 1.2 मिलियन आप कह सकते हैं कि 1.2 मिलियन के कैपेसिटी है हमारी। अब हम कई ऐसे हम काम इसमें कर रहे हैं क्योंकि अब ये एयरपोर्ट जब बनाया गया था ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेजी से यहाँ पे पैसेंजर्स की संख्या बढ़ेगी, तो अब हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: और अभी तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल या शैशव में ही है, फिर भी बहुत प्रतिमान स्थापित किए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आपने चैलेंज कर दिया कि इतने कम समय में इतने व्यवस्थित और इतने सारे आपको एकोलेट्स और प्राइजेस

0: भविष्य की क्या कार्य योजना है?
1: देखिए, भविष्य की योजना यही थी जो हमारा फेज टू डेवलपमेंट का है कि टर्मिनल बिल्डिंग चूंकि दो फ्लाइट के एक्सपेक्टेड में बनी हुई थी, तो अब थोड़ा सा कंजेशन उसमें होने लगा क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो टर्मिनल बिल्डिंग को मॉडिफाई करके या नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाना है हमें। साथ ही साथ हम बहुत सारे फेज टू की अगर मैं बात करूं तो फेज टू में हमने बहुत सारी चीजें प्लान की हैं। अभी जैसे हमारे पास 8 के आसपास एप्रॉन में पार्किंग वे हैं, वो हम और 16 के आसपास और बढ़ाने जा रहे हैं। रनवे जो अभी हमारा 2200 मीटर का है उसको हम 3750 मीटर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको और मॉडिफाई करके नया मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनल बिल्डिंग का भी जो अभी प्रपोज था वो 50,000 स्क्वायर मीटर का है। एट प्रेजेंट जो हमारे पास 6,000 ही स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है, तो उसको भी लगभग 3 गुना 4 गुना करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप आगे आने वाले सालों में देख पाएंगे। अभी हम अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट कई वजहों से नहीं चला पा रहे हैं, तो जैसे ही ये बिल्डिंग का एक्सपेंशन हो जाता है और फिर निश्चित तौर पर ये भी आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं।
2: और जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, पर्यावरण के बारे में भी बहुत गंभीरता से सोचा जा रहा है और इस मामले में भी अयोध्या का एयरपोर्ट अलग स्थान रखता है।
1: बिल्कुल, हम लोग कई ग्रीन इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अभी पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही लगभग 100 से ज्यादा अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो 100% ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी सोलर पैनल हमने रखे हुए हैं, सोलर पैनल के थ्रू भी हम लोग यूज कर रहे हैं उनको। हमारी सारी लाइटों को हमने LED लाइट में कंजर्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके वाटर कंजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है या अयोध्या एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से पर्यावरण को महत्व देता है और अच्छे से समझता है कि किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ सस्टेनेबल वे में ग्रो कर पाए।
2: ग्रे मानक पर भी आपका एक खरा है और सोलर पावर्ड
1: जी
2: एयरपोर्ट है। अच्छा धीरेन्द्र जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की कोई ढांचागत सुविधा आती है किसी क्षेत्र में तो लोकल कम्युनिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जो वहाँ की स्थानीय कलाकृति होती हैं, जो आर्टिसंस होते हैं उनके लिए भी तो एयरपोर्ट्स पर अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे शॉप्स भी होते हैं जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो खरीद सकते हैं। क्या इस तरह की सुविधा भी है या भविष्य में करना?
1: नहीं, ये बिल्कुल सुविधा है, बल्कि हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मोटो यही है कि जब हम आप कहीं एयरपोर्ट खुल रहा है तो उसका मेन मोटो होता है कि उस शहर का उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र में सब लोग आते हैं, उसमें लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल लोगों को रोजगार, ये सब चीजों का निश्चित तौर पर विकास होता है। और इसी तारतम्य में हमारे यहाँ कई लोकल फूड्स की जो हमारे F&B शॉप्स हैं उनमें स्पेशली लोकल फूड्स रखे जाते हैं, चाहे वो लिट्टी चोखा की बात करें, चाहे आप जो भी अपने यहाँ के लोकल क्विजीन की बात करें, तो वो सब रखे जा रहे हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए हमने स्पेशल जगह बनाई हुई है अवसर स्कीम के तहत, जहाँ पे यहीं के लोगों ने जो चीजें बनाई हुई हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, उसको ही बेच रहे हैं वो। तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है CDO साहब के और प्रशासन के माध्यम से कि जहाँ पे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच पा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सभी फूड एंड बेवरेज पे भी लोकल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं।
2: जी, तो एक तरह से वोकल फॉर लोकल जो अवधारणा है उसको भी आप
1: पूरी तरीके से
2: रियलाइज कर रहे हैं।
1: जी,
2: सेफ्टी बड़ा कंसर्न होता है जब हवाई जहाज की बात होती है, हवाई अड्डे की बात होती है, तो आपके पास बहुत सारे स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, एक अच्छा ETC है
1: जी।
2: तो और कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए जिससे
1: सेफ्टी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो ग्रास कटिंग से लेके हो कि ग्रास इतने इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए हमारे पूरे एरिया, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ पक्षियों का एक बड़ा खतरा, आजकल आप सुनते ही होंगे कि कई जगह पक्षी टकरा गए, उसकी वजह से कई जहाजों को काफी नुकसान होता है, उसको लेके बहुत हम लोग गंभीर हैं। और उसको लेके हम लोगों को, जैसे हमने कहा कि जोन गन्स होते हैं, लोग बर्ड चेजर्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस हमारे उसी फील्ड में जब लैंडिंग और टेक ऑफ या पूरा ऑपरेशन चलता है तो इस तरीके की बर्ड स्केयरिंग डिवाइसेस हैं। और इसमें नॉट ओनली कि क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें एयरपोर्ट अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित होता है। तो हमारी एक एयरपोर्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें कमिश्नर साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं और DM और सभी लोग उसके सदस्य होते हैं, नगर आयुक्त। तो ये रिसेंटली अभी मीटिंग हुई, उसमें भी हम लोगों ने सबने ये चर्चा की कि किस तरीके से इस एयरपोर्ट को और सेफ बनाया जाए। आसपास के इलाकों में अगर कहीं कचरा पाया जाता है तो हमारी नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग होती है और नगर आयुक्त और नगर निगम और ADA और सब प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के यहाँ पे सेफ्टी को हाईएस्ट स्टैंडर्ड की रखा जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा यात्रियों को ना हो और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से यात्रा कर सके।

0: डायरेक्टर ऑफ दिस एयरपोर्ट, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं, क्या वो भी कुछ इस सेफ्टी या बाकी चीजों में योगदान कर सकते
1: हैं? देखिए दो चीजें हैं, एक तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आसपास के एरिया में हैं, जैसे एक हमारा एनओसी का एक, जैसे क्योंकि एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो निश्चित तौर पर अगर हाइट पे कोई चीजें हैं या बिल्डिंग्स हैं या पोल्स हैं उनसे भी खतरा होता है, तो एक प्रक्रिया है जिसमें एनओसी लेनी होती है। तो जो भी एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मकान बनाता है तो उसके हमने एक एनओसी का प्रावधान किया हुआ है, हमारी एक वेबसाइट है जिसमें नोकास की एक वेबसाइट है, बड़ा इजी प्रोसेस है, उसमें वो एनओसी ले सकते हैं। एडीए में भी जब आप परमिशन लेने जाते हैं तो एडीए भी आपसे एनओसी की मांग करता है, और वो एनओसी लेने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जब आप मकान बना रहे हैं तो किसी तरीके का ना तो यात्रियों के लिए कोई खतरा है, साथ ही साथ आपको भी एक खुद के लिए भी एक सहूलियत ये है कि कल को अगर ये हाइट से ज्यादा परमिसिबल हाइट से आप ऊपर चले गए तो कल को अगर हाइट कम करनी पड़ गई तो वो भी एक नुकसान की बात है। तो हम लोग अवेयर कर रहे हैं आसपास के लोगों को भी, साथ ही साथ ये भी हमने कई बोर्ड्स भी लगाए हैं अवेयरनेस के कि कूड़ा कचरा जो है आसपास के एरिया में ना फैलें, क्योंकि उससे जो है बर्ड्स जो है अट्रैक्ट हो रही हैं और उससे भी एक खतरा होता है। ये दो तीन चीजें हैं जो हम आसपास के लोगों में रेगुलर बेसिस पे अवेयरनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि इतना बढ़िया फैसिलिटी है अयोध्या एयरपोर्ट आपके पूरे शहर में, और पूरे अवध के लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे अम्बेडकर नगर हो चाहे बस्ती गोंडा, आप लोग एक बार जरूर यहाँ आए, उस बिल्डिंग को एक बार देखिए, आपको उस बिल्डिंग को देख के अपने आप पे प्राउड होगा कि हमारे सिटी में इतनी अच्छी एयरपोर्ट की बिल्डिंग, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है। और निश्चित तौर पर आप आइए, आप सबका स्वागत है। स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं ये कहूँगा, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स उनके फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो वो भी लोग आके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, हमारे एयरपोर्ट पे आके स्टूडेंट्स विजिट कर सकते हैं, स्कूल के लोग स्कूल भी विजिट करा सकती हैं, तो इस तरीके की पूरी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं।
0: और जैसा कि आपने कहा कि हमें प्राउड होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, और एक गर्व की अनुभूति है, और इसको सहेजना, इसका संरक्षण करना, इसको सस्टेन करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन। धीरेन जी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, इस सरकार ने 12 वर्ष भी पूरे किए हैं, और अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें, वो चाहे हाईवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, बहुत सारा काम हुआ है
1: जी,
0: जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं से आपका फाइनल टेक अवे क्या है?
1: मैं यही कहूंगा कि 12 साल जो विकास के हुए हैं उसमें निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि उसमें एविएशन के फील्ड में भी बड़ी ग्रोथ हुई है। कहां पहले लगभग 2014 की अगर बात करें तो 64 एयरपोर्ट थे, अब आज जाके 165 एयरपोर्ट की संख्या डबल से भी ज्यादा हो गई है, साथ ही साथ पैसेंजर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो एविएशन फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम दुनिया के डोमेस्टिक मार्केट की करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं। तो इस तरीके से एविएशन फील्ड में नॉट ओनली कि अवसर हैं लोगों के लिए, साथ ही साथ आपको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब चीजों का हम फायदा उठाएं, और सबसे सेफ जो है ट्रेवल वो एयर ट्रेवल ही माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आप सब इसका फायदा उठाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे एविएशन जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है।
0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धीरेन्द्र सिंह साहब को, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के निदेशक हैं, बहुत सारी बातें बताई, और एक इसमें हमें बड़ा प्राउड, जैसा कि आपने कहा कि होना चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, AI ने इतना शानदार प्रोजेक्ट बना के हमें दिया है, हमारे तीर्थयात्रियों को दिया है, इंटरनेशनली लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और हम लगातार सुनते रहेंगे, धीरेन्द्र जी को बुलाते रहेंगे और इनसे बात करते रहेंगे, और क्या कुछ नया ताज़ा हो रहा है इस एयरपोर्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी है भेंट वार्ता अयोध्या एयरपोर्ट की शानदार यात्रा। वार्ता करते श्री धीरेन्द्र सिंह, निदेशक हवाई अड्डा अयोध्या, आपसे बातचीत की थी आशीष चतुर्वेदी ने।
3: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

0: जानो फिर मानो।
1: और चलते चलते समाचार पत्रों पर, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को शोध व शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने की दिशा में होगा प्रयास। नरेंद्र बीज का कराया जाएगा ट्रेडमार्क, किसानों को सीधा लाभ। परिषदीय स्कूल तो खुले पर कम रही बच्चों की उपस्थिति। डेढ़ माह ग्रीष्म अवकाश के पास 1791 परिषदीय विद्यालयों में रौनक। अवध विश्वविद्यालय में योग का किया गया पूर्वाभ्यास। मैत्री मैच में स्टेडियम मकबरा बना विजेता। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रवेश परीक्षा आज से योग व शस्त्र मुद्दों से सुसज्जित होगा दशरथ पथ। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या अब यहीं समाप्त होता है।
2: प्रणाम अयोध्या।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
3: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
4: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
3: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
4: फोन नंबर 9161877347।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: 35 साल बेमिसाल।
8: बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
7: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल। और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर। जन जन की आवाज आपके दिल के पास।
9: हेलो
10: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
11: माय नंबर इज
12: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
13: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
14: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
15: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
17: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
16: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
17: जी हाँ, और वो है योग।
16: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
17: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
16: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
17: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
16: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
17: योग करिए, निरोग रहिए।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपसे हमारा साथ आज 33 वर्ष पूरे हो चुके। आपका जुड़ाव हमारे आकाशवाणी अयोध्या से आज पूरे 33 साल पूरे कर चुका है। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अयोध्या। दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन का स्थापना दिवस। ये केवल एक वर्षगांठ नहीं बल्कि उन अनगिनत यादों, भावनाओं और विश्वास का उत्सव है जिन्हें हमें आपसे जोड़े रखा है। आपकी पसंद के गीत, आपके संदेश, आपके गीत, आपका स्नेह और आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम गर्व के साथ उस सफर को याद करते हैं जिसमें हमने गीतों, संगीत, समाचारों, जानकारियों और मनोरंजन के माध्यम से आपके जीवन के हर रंग को छूने का प्रयास किया। इस विशेष अवसर पर हम सभी अपने सभी श्रोताओं को, सहयोगियों को, शुभचिंतकों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका प्यार और विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

खूबसूरत यात्रा यानी अपने इस खूबसूरत सफर को जश्न में मनाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आपके संदेश आपके गीत का।

जी बिल्कुल, आज का पहला गीत फिल्म धुरंधर से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं। ग्राम वाडा घर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत और इनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म धुरंधर से।

दोस्तों, अपने स्थापना दिवस पर हम तो इतना कहना चाहेंगे कि इन वर्षों में हमने न केवल कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, बल्कि आपके सुख दुख, उत्सव और विशेष पलों का भी हिस्सा बनने की कोशिश की है। हर सुबह की शुरुआत से लेकर देर रात तक आपका साथ और आपका भरोसा हमें बेहतर करने की प्रेरणा देता है। हम प्यार से उस सफर को याद करते हैं जिसमें हमने गीत, संगीत और बहुत सारी बातें भी की हैं आपके साथ। तो सबसे बड़ा योगदान तो आपका है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म अहिंसा से। और ये बधाई हमारे पास भेजी गई है कृष्ण विहार कॉलोनी, रायबरेली रोड, बाईपास, अयोध्या धाम से। अनूप कुमार, चंद्रकला वैभव, विभू, सुरभि, सांची, फूलकली, ऋषि, अर्चना, वैष्णवी और शशि सिंह ने, और इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन का लोकप्रिय आकाशवाणी अयोध्या यूं ही नित निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे ध्वनि तरंगों के माध्यम से। ये देखिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें और श्रोताओं को इतना तक याद रहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप हमारे श्रोता ऐसे हैं जो बराबर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम का ये गीत भी सुन लेते हैं, फिल्म अहिंसा से। बिल्कुल, आज बधाई का दिन है तो गीत भी कुछ ऐसा ही।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

जी जी बिल्कुल, हमें पता है कि आपको भी इंतजार है अगले गीत का। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या को 101.9 FM बैंड पर, और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, कहीं भी कभी भी। दोस्तों अभी समय है कि हम अपने अगले गीत की तरफ बढ़ें। ये गीत श्रोताओं की फरमाइश पे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये हमारी भावनाओं, यादों, अनुभवों की खूबसूरत अभिव्यक्ति होती है। यही वजह है कि हर गीत अपने साथ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई एहसास, कोई ना कोई संदेश लेकर आता, और हमें खुशी है कि आप अपने संदेशों और गीतों की पसंद हमारे साथ साझा करते हैं। आपका ये स्नेह ही इस कार्यक्रम को और भी खास बनाता है। तो आइए बिना देरी के सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे पसंद किया है सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने फिल्म दो रास्ते के गीत को। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 33 साल बेमिसाल।
3: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
2: बधाई हो। जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहाँ होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 33 साल बेमिसाल।
3: बधाई हो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी अयोध्या पूरे कर रहा है अपने 33 सुनहरे साल, और इस खास मौके पर 17 जून को सुबह 10 बजे से प्रसारित होगा एक विशेष कार्यक्रम 33 साल बेमिसाल, जहां होंगे यादों के कुछ अनमोल पल, पुराने दिनों की मिठास और आपके अपने पल की गूंज। तो जुड़िए उस आवाज के साथ जो कभी आपसे दूर नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ

0: आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड पर जन जन की आवाज आपके दिल के पास। और इसी के साथ आज का सफर, आपके संदेश, आपके गीत का बस यहीं तक। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े भी जरूर रहेंगे। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और अब समय है कार्यक्रम हेलो अयोध्या का।
1: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
1: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
1: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों का तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
8: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
7: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
8: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
7: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम आज के अपने इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। दोस्तों आज की ये मुलाकात कुछ खास है क्योंकि आज हमारा रेडियो स्टेशन मना रहा है अपना स्थापना दिवस। वर्षों का ये सफर आपकी मोहब्बत, आपके विश्वास और आपके निरंतर सहयोग से ही संभव हो पाया। रेडियो केवल आवाजों का माध्यम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक ऐसा सेतु है जो हर खुशी, हर उत्सव, हर भावना को आप तक पहुंचाता है। और इस खूबसूरत यात्रा में आप सभी श्रोताओं, आप सभी से हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। आप सभी का साथ हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह ही हमारी पहचान है और हमारी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तो आइए इस जश्न को और भी यादगार बनाते हैं गीतों, बातों और आपके साथ के रंगों से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर धड़कन से जुड़ी है आपकी अपनी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा सिंह। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर, देखते हैं कौन से श्रोता है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
9: हेलो,
0: हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
9: थैंक

थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, हमें लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कहने थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है, आवाज बहुत कट के आ रही है आपकी। चलिए अपने बारे में कुछ आप हमारे श्रोताओं को बताइए। आज तो बड़ा ही खास दिन है, आपको भी पता होगा कि आज हमारा आकाशवाणी 33वां जो है स्थापना के 33 साल बिता चुका है। हेलो, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप, यही बता दीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है। चलिए कोई बात नहीं है, कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे अपना नाम भी बता दीजिए, हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं। जी पढ़ाई कर रहे हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, तो आपके लिए कहाँ तक लाभप्रद रहा है, जैसे इसमें जो कार्यक्रम जाते हैं उनमें से कोई कार्यक्रम ऐसा लगा आपको जो आपके लिए लाभप्रद है? अच्छा, लग गया ना। चलिए, और आज खास दिन पे आपका लगा है, सोचिए आज हम अपनी आकाशवाणी का स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज आप पहली कॉल आपकी लगी है। नहीं लगता, कोई बात नहीं सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये बात आपने साबित कर दी। देखिए लगातार आप लगे रहे, आखिर आपकी कॉल लग गई। चलिए, कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप? चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गीत संगीत का ये सफर आगे चलता रहेगा और देखते हैं हमारे आज के दूसरे कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो। हाँ सर,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से फोन किया है आपने। नाम तो अभी आपका सुनाई नहीं दिया। छह महीने से लगा रहे हैं। जब से शुरू है यानी आप 33 साल से सुन रहे हैं आज, तो 33 साल पूरे हुए, 34वां लगेगा आज से।
1: सर हम 55 से सुन रहे हैं।
0: देखिए हमारे ऐसे ऐसे श्रोता जो जब से हमारा आकाशवाणी केंद्र खुला है तब से अब तक सुन रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आपकी कॉल लगी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी करना भी बहुत बड़ी बात है, तभी अनाज मिलता है हम लोगों को।
1: हाँ,
0: है ना। और क्या बताना चाहेंगे, आज हमारे आकाशवाणी केंद्र पे आपका फोन लगा है तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को।
1: हम साथ यही करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, परिवार सुनते हैं, संध्या सुबह है, एक बजे है, 11:05 तक आता, 11:05 तक सुनते हैं, एक बजे आंगनबाड़ी घूमते हैं, फिर हलो फरमाइशी के साथ सुनते हैं, फिर बाल में आस पास की बातें सुनते हैं सर।
0: अच्छा ये बताइए, किसान वाड़ी में जो बातें बताई जाती हैं या जो ग्राम जगत में बातें बताई जाती हैं, उनसे कुछ फायदा होता है, आप कभी अपनी परेशानियों का हल उसमें ढूंढे हैं।
1: हाँ सर, जो बीज सब दवा आता है, अभी सब ले आते हैं, वही बताओ कौन सा सर। हाँ
0: जी जी,
1: हाँ जो दवा आता है वही बता देते हैं, ले आते हैं सर।
0: जी जी, अच्छा अच्छा, तो मतलब फायदा होता है सुन के। अच्छा आज कौन सा गीत सुनेंगे आप।
1: नदिया का पार सर।
0: कौन सा।
1: आंगन में आई हमारे भौजी।
0: हमारे भौजी, चलिए आज आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है और आपका कॉल लगा इसके लिए हम भी बहुत खुश हैं। फिर हमें कॉल जरूर करिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: गीत संगीत का ये कारवां चल रहा है और आज हम मना रहे हैं अपने आकाशवाणी के 33 साल पूरे होने पर। ये कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो चल रहा है और आप लोगों से बातचीत करके हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं अपने 33 साल के स्थापना दिवस की। ये देखते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
2: मैम, नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी मैम, थैंक यू मैम। मैं आपके चैनल के रेगुलर श्रोता बात कर रही हूँ, स्वाति सिंह, ग्राम खेसरी, अंबरपुर, मनकापुर, जिला गोंडा से।
1: बहुत अच्छा, बहुत तेजी से आपने अपना नाम पता बताया कि ऐसा ना हो कि फोन कट जाए।
2: जी मैम।
1: नहीं नहीं, कटेगा नहीं भाई, आप आराम से बताइए। हमारे श्रोता भी आज बहुत ध्यान से कार्यक्रमों को सुन रहे हैं।
2: जी मैम, आज आकाशवाणी के 33 वर्ष पूरे होने पर मैम आपको और सभी अनाउंसर को और सभी श्रोताओं को, पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई भाई, आप ही लोगों से हम लोग का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ता है, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। जब आप लोग तारीफ करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। चलिए सर, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
2: मैम हम भी बढ़िया हैं।
1: चलिए अब आपकी पसंद का गीत हो जाए।
2: जी मैम बिल्कुल, कर दीजिए।
1: ठीक है, तो फिर किस फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
2: मैम फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर और गाने के बोल हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते

0: स्वाति जी, आपकी आवाज में हमने ये सुन लिया है।
1: चलो मैम यही गाना सुना दीजिए।
0: जो स्वाति जी, आपकी आवाज में ये गीत सुन लिया है तो हम सोच रहे कुछ और ही ना सुना जाए। आपने इतना अच्छा गा दिया कि अब इसके बाद अब सोचे कोई और गीत सुना जाए।
1: जी मैम, हम सभी श्रोताओं की तरफ से ये गीत है अपने आकाश वाणी अध्याय के लिए मैम, और सभी पूरी टीम के लिए।
0: चलिए अब हम आपके लिए ये गीत भेज रहे हैं, सुनिए।
1: जी मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब क्या

0: जी बिल्कुल, क्या मिसाल दूं अब अपने आकाशवाणी की और अपने इन प्यारे प्यारे श्रोताओं की जो हमसे बातें करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, थोड़ी जानकारी हमको देते हैं और थोड़ी हमारे कार्यक्रमों से वो खुद लेते हैं। अभी देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे बात करने वाले हैं। हेलो,
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, आकाशवाणी अयोध्या तो है खुशियों का कमल। आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस की हमारे तरफ से और पूरी आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत बहुत सारा धन्यवाद हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से। आप लोग इतना प्यार देंगे तो हम लोग तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, कितनी प्यारी सी बातों के साथ आपने इतना, मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी बातें। कौन है आप, कहाँ से फोन किया है, हमें ये भी बताएं।
1: जी मैम, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: अनु जी क्या करती हैं
1: मैम? मैं तो सबसे अच्छा जो काम करती हूँ वो रेडियो सुनने का, सारी अड्डा के साथ हर पल लगे रहने का।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और इतने प्यार से सुनते हैं, ये सुनकर कितनी खुशी मिलती है हम आपको बता नहीं सकते हैं।
1: जी मैम, मुझे ना आप लोगों की आवाज़ सुन के, इतने अच्छे कार्यक्रम करते हो, बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत खुशी मिलती है। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी काम में बिजी रहूँ, कुछ भी करूँ, मैं जॉब कुछ भी, हर जगह आकाशवाणी अध्याय मेरे साथ रहता है। और एक बात मैम, मैं भी आकाशवाणी अध्याय के साथ साथ अपना 13वां स्थापना दिवस मना रही हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप, मतलब हमारे श्रोता इतनी जागरूक है कि हमसे ज्यादा खुशी उनको दिख रही है। आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप कितने दिनों से हमारे आकाशवाणी से जुड़ी हैं, हमारे कार्यक्रमों को रेगुलर सुनती हैं। चलिए आज कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: मैं

0: तीन से जुड़ रही हूँ, तो 23 साल हमें जुड़े हुए भी हो गए और इधर 33 साल हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनेंगी आज?
0: मैम मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है भीगी पलके और गाने के बोल है जन्म जन्म का साथ, और ये गाना ना आकाशवाणी अड्डा को इसलिए सुनाना चाह रही हूँ मैं।
1: जी बिल्कुल, जन्म जन्म का साथ हमारा आपका तो बन गया है आकाशवाणी के साथ। चलिए,
0: मुझे नाम भी मिल गया है रेडियो का और आप लोगों के साथ जुड़े रहने हर पल मतलब बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
1: क्या बात है, ये सुकून ये राहत आवाज के माध्यम से आप तक हमेशा हमेशा पहुंचती रहेगी, आपको हमेशा सुकून देगी और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी रहें।
0: जी मैम, और एक बात मैम, जब मैं थोड़ा छोटी थी जब रात में आता था 9 बजे से मनभावन में, तो जिस दिन भी जिस फिल्म का गाना आया ना मैं सोचू आज मैं सुनूंगी पक्का सोऊंगी नहीं, हम दोनों सिस्टर्स सोते थे तो बीच में रेडियो रख लेते थे बिस्तर पर ही, और जैसे ही वो गाने की बारी आ जैसे आप लोग खत जब खत पढ़ने लगे तब तक तो जागू और जैसे ही गाना चलने वाला हो मैं सो जाती थी।
1: चलिए आपने
0: मेरे साथ बहुत बार हुआ है।
1: चलिए समय समाप्त हो रहा है, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: दोस्तों आपके साथ 33 साल बेमिसाल रहे और अब हमें दीजिए इजाजत हमारे इस कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया राजकुमार मौर्य जी ने और अब दीजिए इजाजत हमें इस कार्यक्रम से।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम।
1: हो

0: सर आदाब प्रणाम श्रोता
1: करेंगे सबका स्वागत
0: आकाशवाणी अयोध्या के इस भव्य विशेष और दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं नेहा
2: और मैं विवेकानंद
0: और आज का ये मंच सजा है एक बेहद खास जश्न के लिए
1: स्वैग से कर...

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: खूबसूरत आवाजों का सफर यूं ही चलता है, खूबसूरत आवाजों का सफर यूं ही चलता है। ऐ आकाशवाणी, तू यूं ही दिलों में बसती रहो, बसती रहो, क्योंकि आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या के 33 गौरवशाली वर्ष का उत्सव।
2: दोस्तों, आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं है, ये है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान, और इसका मूल मंत्र सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यानी हर वर्ग, हर व्यक्ति और हर दिल तक पहुंचने का संकल्प।
1: दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी अयोध्या मना रहा है अपनी स्थापना का गौरवशाली दिवस। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 17 जून वर्ष 1993 को इस पावन केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के कर कमलों द्वारा हुआ था।
2: आकाशवाणी अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेडियो स्टेशन है, जो वर्षों से जन जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सशक्त माध्यम बना हुआ है। इस केंद्र की स्थापना 17 जून सन 1993 को की गई थी। स्थापना के बाद से ही यह केंद्र निरंतर क्षेत्रीय संस्कृति, लोक परंपराओं और जन भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति देने का कार्य कर रहा है। यह स्टेशन लोकल रेडियो स्टेशन श्रेणी के अंतर्गत आता है और लगभग 41 लाख से अधिक जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।
1: आकाशवाणी अयोध्या का प्रसारण 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM फ्रीक्वेंसी पर होता है, जो एक

0: एक किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर के माध्यम से संचालित होता है। यह ट्रांसमीटर AIR स्टूडियो परिसर अयोध्या में ही स्थापित है। प्रसारण की अवधि प्रतिदिन लगभग 17 घंटे 17 मिनट यानी सुबह 5:53 से रात 11:10 तक की होती है।
1: इसमें लगभग 8:18 के मूल कार्यक्रम और 8:59 के रिले कार्यक्रम शामिल है।
0: आकाशवाणी अयोध्या की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुभाषिकता है। यहाँ हिंदी जो मुख्य भाषा है, अवधी, स्थानीय बोली और संस्कृत में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय समाचार हिंदी में और क्षेत्रीय समाचार हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी प्रसारित होते हैं।
1: कार्यक्रमों की विविधता इस केंद्र की पहचान है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण, लोक संगीत, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत, लाइव फोन इन कार्यक्रम तथा विशेष रिपोर्ट और संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह केंद्र विशेष रूप से अवध क्षेत्र की लोक संस्कृति की परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: आकाशवाणी अयोध्या का प्रसारण क्षेत्र अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों तक ही नहीं है, यह देश और विदेशों में भी है। यहाँ विभिन्न पदों पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डिजिटल युग में भी यह केंद्र सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ा हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी सक्रिय उपस्थिति है, जिससे यह नई पीढ़ी तक भी अपनी पहुँच बना रहा है।
0: समग्र रूप से आकाशवाणी अयोध्या न केवल एक रेडियो स्टेशन है, बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति, जन संवाद और जन जागरूकता का एक सशक्त मंच है, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मूल मंत्र को सार्थक करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है।
1: एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन सपने बहुत बड़े, और तभी से लेकर आज तक आकाशवाणी अयोध्या आम जन की आकांक्षाओं को स्वर देने का, समाज को जोड़ने का और संस्कृति को सहेजने का निरंतर प्रयास करता आ रहा है। अवध की समृद्ध कला, उसकी मधुर संस्कृति, उसकी परंपराओं की खुशबू, इन सब को संजोने और आगे बढ़ाने में आकाशवाणी अयोध्या की भूमिका वाकई अद्वितीय और सराहनीय।

0: उन संदेशों को पढ़ने का जो हमारे श्रोताओं ने दूर दूर से हमें भेजे हैं। जी हाँ, वो प्यार जो आप हमेशा आकाशवाणी अयोध्या को देते हैं। आइए देखते हैं किन किन श्रोताओं ने दिया है अपना प्यार भरा संदेश।
1: आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस पर हमें मिले हैं ढेर सारे संदेश। सबसे पहला संदेश हमें दिख रहा है दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आपने स्थापना दिवस की बधाई दी है। आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस की बधाई दी है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ ने। और 90 वर्षों से ज्ञान संस्कृत संगीत और जन जागरूकता की अमूल्य धरोहर बनकर आकाशवाणी ने देश के करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अपनी मधुर वाणी, सार्थक कार्यक्रम और जनहितकारी संदेश समाज को निरंतर नई दिशा देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आकाशवाणी इसी प्रकार सफलता के नए आयाम स्थापित करती रहे और अपनी स्वर्णिम यात्रा से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहे। स्वरों की यह अनमोल विरासत यूं ही गूंजती रहे, ज्ञान संस्कृत और प्रेम की ज्योति सदा चलती रहे। जी हाँ, स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना संदेश के साथ ये हैं सिंधौली बरेली से जीशान वारसी।
0: आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई हो। आकाशवाणी अयोध्या एवं समस्त स्टाफ को 33वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे। ऐसी शुभकामना आप भेजते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड।

0: उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता राम शरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा, कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम कमर कुमार और अफजल मलिक ने आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। और मनोज निषाद जयपुर राजस्थान से लिखते हैं कि आकाशवाणी का बहुत ही पुराना श्रोता हूं, जब आकाशवाणी फैजाबाद शाम को 3 बजे से आरंभ होता था उस दौर से सुन रहा हूं। कालांतर में दूसरे राज्यों में नौकरी करने की वजह से संबंध टूटा, लेकिन अब प्रसार भारती मोबाइल ऐप से समय से सब कुछ पहले जैसा हो गया है। बाहर भी रहते हुए अपने शहर की धड़कन आज भी हमारे दिल में धड़क रही है। आई लव आकाशवाणी अयोध्या, ये संदेश हमारे पास जयपुर राजस्थान से मनोज निषाद जी का आया है। स्थापना दिवस पर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने संदेश भेजा है। आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस पर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा ने।
1: स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ये लिखते हैं हमारे श्रोता विनय मोहन सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से। और संदेश है जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल का। आकाशवाणी अयोध्या को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, आपकी पूरी टीम और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं लिखते हैं। साथ ही लिखते हैं कि आपका यह केंद्र सच में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, यही दुआ है। आकाशवाणी का सफर ही ऐसा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र के साथ 90 साल से देश को जोड़ रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन का लाइव प्रसारण भी आकाशवाणी ने किया था और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का दर्शन भी देशवासी कर रहे हैं। अयोध्या केंद्र भी इसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा सूचना संस्कृत और मनोरंजन के जरिए जन जन तक पहुंच बनाकर। ये आकाशवाणी है कि गूंज ही कायम रहे, श्रोताओं का प्यार यूं ही मिलता रहे। पूरी टीम को बधाई और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। रेडियो से जो हमारा नया नाता जुड़ा है वह हमारा नाता ऐसे ही जुड़ा रहे। लिखते हैं जय श्री राम के साथ कस्बा बराडा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल।
0: आकाशवाणी की स्थापना दिवस की पूरी आकाशवाणी परिवार को अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। आज रेडियो ना होता तो हमारी कोई पहचान ना होती। बिना लागत का स्वस्थ मनोरंजन करने वाला हमारा सच्चा साथी है रेडियो। आकाशवाणी अयोध्या ने हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। दूर दराज के इलाकों तक सटीक समाचार, संस्कृति पहुँचाने, गीतों की मिठास, खबरों की सच्चाई और उम्मीद की आवाज, यही आकाशवाणी अयोध्या की है पहचान। इस विशेष अवसर पर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संदेश हमारे पास तक आया है कुमार अनूप सिद्धार्थ, रघुकुल नगर कॉलोनी, सिविल लाइन, गोंडा से। श्रोता और आकाशवाणी एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। समस्त श्रोता साथियों को सुमधुर स्नेह। आकाशवाणी एवं रेडियो कार्यक्रमों में अनाउंसर अपनी अथक परिश्रम से कार्यक्रमों में निखार लाने का प्रयास तो करता ही है, किंतु श्रोताओं की राय एवं सुनने वाले विचार ही कार्यक्रम की सही वस्तुस्थिति को स्पष्ट करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य पर अडिग देश के अनेकों आकाशवाणी केंद्र आज जनता को और भी सभी कुछ सुनने को तत्पर हैं, जिनकी चाह सभी को अपनी रुचि के अनुसार होती है। आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस पर और आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। ये संदेश हमारे पास तक आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का।
1: ढेर सारे संदेश है, एक संदेश और है। लिखते हैं गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड से। हम सबकी प्रिय आकाशवाणी अयोध्या दिन दुनी रात चौगनी प्रगत करे, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभम श्रीवास्तव ने संदेश भेजा है वजीरगंज चेला छावनी अयोध्या से। आप भी आकाशवाणी अयोध्या के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आप लिखते हैं नित प्रतिदिन इसी तरह तरक्की की राह पर बढ़ते रहे और लोगों का मनोरंजन करते रहे। आपकी पूरी टीम और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाओं का ये संदेश है साथ में लिखते हैं, आपका यह केंद्र सच में दिन दूनी रात

0: की करें यही दुआ है। आकाशवाणी का सफर ही ऐसा है। और बधाई देते हैं इसी के साथ निपेंद्र वर्मा तकपुरा दर्शन नगर अयोध्या से, ग्राम भवानीपुर विजयनपुर पोस्ट रामपुर भगन जिला अयोध्या से प्रेमचंद वर्मा का संदेश। लिखते हैं आकाशवाणी अयोध्या की पूरी टीम को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सुरीली आवाज और बेहतरीन कार्यक्रम हमेशा ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान और मनोरंजन के रंग भरते रहें। रेडियो की दुनिया में आप नई ऊंचाइयों को छुएं, यही मंगल कामना है। सुर संस्कृत और समाचार का अद्भुत संगम आकाशवाणी अयोध्या, इसके 33वें स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। लिखते हैं सेक्टर 2B गांधीनगर गुजरात से GK परमार।
1: भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की पवित्र भूमि पर आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस की सहस्त्रों सहस्त्रों शुभकामनाएं। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा माखीजा कुटुंब, ये पूरा परिवार हमें आकाशवाणी के 33वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेज रहा है। और अगला जो संदेश है वो हमारे पास आया है विवेक विहार जनकपुरी बरेली से गुरुदेव मिश्रा का। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली की तरह ही 17 जून को आकाशवाणी अयोध्या का भी बहुत ही विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी सुनने वाले प्रसारकों और प्रसारण से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, कार्यक्रम में हमें भी शामिल करें, ऐसा लिखा है हमारे श्रोता ने इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। श्रोता का नाम है चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिफा सिफाली। आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आकाशवाणी परिवार एवं सभी श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक शुभ बधाई एवं शुभकामनाएं। रेडियो जो है वो मनोरंजन एवं ज्ञान वर्धक का स्वस्थ साधन है जो हमारे मन मस्तिष्क में स्वस्थ रूप से पहुंचता है और हमारा काम भी सुचारू रूप से चलता है, ऐसा लिखा है हमारे श्रोता दिलदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी ने। आप सभी ने कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से ये संदेश हम तक भेजा है और ढेर सारे प्यारे प्यारे संदेश और आप सभी का प्यार हम तक पहुंचा है दूर दूर से।
0: हिमांशु कुमार चित्रगुप्त नगर खगोरिया से संदेश भेजे हैं, आपने भी ढेर सारी बधाई दी है। बधाई दी है मोहम्मद जाकिर मंसूरी ने बाजार रोड मुंगीसापुर से, और पूर्वा पिंडोर रायबरेली से जितेंद्र पाल, समर्थ पाल, विराट पाल, अशोक पाल और पीयूष पाल के साथ सुकन्या पाल का भी संदेश में मिला है। संदेश है दशकों से देश की आवाज और कला संस्कृति को घर घर पहुंचाने वाले राष्ट्र के सबसे विश्वसनीय और प्रिय माध्यम आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत संदेश। संदेश है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लबीस और मुनीश देवी प्रजापति का। आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर ही बधाई दी है, साथ में लिखा है रघुनंदन शर्मा ग्राम पूरे तिलक छावनी बस्ती से। प्रभात सनातनी राज गुंडवी गोंडा उत्तर प्रदेश से भी संदेश भेजे हैं, आपने भी स्थापना दिवस की बधाई दी है। और बधाई दी है दानिश सैफी नजीबाबाद से, आपकी भी बधाई। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं को खूब ढेर सारी बधाई।

0: लोकगीतों की मिठास, भक्ति संगीत की सुगंध, समाचारों की विश्वसनीयता और श्रोताओं के अपार प्रेम ने इसे बना दिया हर दिल की धड़कन। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी का विश्वास नहीं बदला। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर, रेडियो सेट से मोबाइल ऐप तक की यात्रा, आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति प्रसार भारती ऐप के माध्यम से आकाशवाणी अयोध्या सुन सकता है।
1: वास्तव में यह सिर्फ तकनीकी विकास नहीं बल्कि भावनाओं का विस्तार है। 33 वर्षों में आकाशवाणी अयोध्या ने कलाकारों को मंच दिया, लोक संस्कृति को जीवित रखा, समाज को जागरूक किया और सबसे बड़ी बात, हर श्रोता को परिवार का हिस्सा बनाया।
0: जब हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है?
1: इसका अर्थ है हर व्यक्ति तक पहुंचना, उसकी जरूरतों को समझना, किसान के लिए खेती की जानकारी, छात्रों के लिए शिक्षा, आम जन के लिए समाचार और सभी के लिए मनोरंजन, यही है आकाशवाणी की आत्मा।
0: वाह, सच में यही कारण है आकाशवाणी आज भी लोगों के दिलों में बसती है। और अब वक्त है उन खास आवाजों का जो इस मंच को पूरा करती है, यानी श्रोताओं के संग।

0: या
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं चंडीगढ़ से श्री शर्मिला बोल रहा हूँ।
0: आज क्यों फोन लगाए हैं, कुछ मालूम है आपको?
1: हाँ जी, आज हमने आकाशवाणी 33वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।
0: क्या बात है, आपको भी खूब ढेर सारी बधाई और जितने श्रोता इस समय सुन रहे हैं उन सभी को बधाई।
1: जी भाई, मैं रेगुलर लिसनर हूँ और कलाम से हमेशा से जुड़ा रहता हूँ और आपकी आकाशवाणी को तो मैं वैसे भी नमन करता हूँ। वो एक ऐसी जगह स्थापित है जहाँ पे हमारे भगवान राम जी वहाँ से उनकी जो लीला चलती है और उस लीला की जो ब्लेसिंग है वो आकाशवाणी के जरिए हम भी यहाँ घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कहा आपने। अच्छा एक चीज,
1: मेरी ओर से आपको
0: जी
1: आकाशवाणी की पूरी टीम को, स्पेशल स्टेशन डायरेक्टर जी और जितने भी आकाशवाणी अयोध्या से मोहब्बत करने वाले श्रोता हैं सबको आज की दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और कामना करूंगा कि हमारी ये जो मोहब्बत है ये सदियों सदियों तक चलती रहे आगे।
0: क्या बात है, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक चीज बताइए, कितने वर्षों से सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या?
1: सर अयोध्या को मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वैसे आकाशवाणी से मैं जुड़ा हूँ 1970 से, लेकिन अयोध्या को मैं करीब 6-7 साल हो गए जुड़ा हूँ।
0: अरे ये छोटा वक्त नहीं होता है, 6-7। अच्छा,
1: बड़ा सुकून मिलता है जब आप प्रोग्राम सुनते हैं सर, अपनी मन का गीत सुनते हैं
0: जी,
1: या अयोध्या से कोई अच्छी अच्छी बातें सुनते हो। सर मैं हमेशा दूसरे चैनलों पर भी यही कहता हूँ आकाशवाणी अयोध्या के, क्योंकि ये आकाशवाणी स्टूडियो सर रेडियो की स्टूडियो नहीं है, मैं जिसको मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में मानता हूँ, यहाँ में बड़ी अच्छी सीख मिलती है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, और एक चीज और है, शिक्षा स्वास्थ्य और मनोरंजन हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल सर, तभी तो मेरे चेहरे पर नूर छाया रहता है क्योंकि आप लोग हमें बहुत मोहब्बत मारते हो सर।
0: क्या बात है, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, बधाई आपको भी और सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी अयोध्या में।
3: नमस्कार
2: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी मैं मोहम्मद फरमान बात कर रहे हैं।
2: जी फरमान जी,
3: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम दोनापुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज आपने कॉल किया है आकाशवाणी अयोध्या को, कुछ खास है ना आज? क्या है?
3: सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को और सभी दोस्तों को और आकाशवाणी टीम को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी आपको भी आकाशवाणी के स्थापना दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: मैंने आकाशवाणी अयोध्या काफी बच्चे को मैं लगभग मुझे 8-9 साल हो गए।
2: 8-9 साल हो गया। कौन कौन से कार्यक्रम आपको आकाशवाणी अयोध्या के अच्छे लगते हैं?
3: मोबाइल पर सुनता हूँ और मैं भी सुनता हूँ और मेरे घर परिवार वाले सभी सुनते हैं।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। खास बात क्या लगती है आपको आकाशवाणी अयोध्या की? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी के स्थापना दिवस की आपको भी और आपके पूरे परिवार को
3: धन्यवाद।
0: बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की भावना के साथ आकाशवाणी अयोध्या। हेलो
4: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कहाँ से फोन लगाए?
4: आरूर शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार तिवारी बात कर रहा हूँ सर।
0: क्या बात है, आप तो हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं
4: सर। आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ आकाशवाणी के स्थापना दिवस की।
0: जी
4: 33 सालों का सफर पता ही नहीं कैसे गुजर गया आपकी प्यार और मोहब्बत की बातों के साथ।
0: बिल्कुल सही बात है, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यही चाहता था कि आप ही पहले बोल दें और आपने पहले बोल भी दिया।
4: आकाशवाणी तो हमारी रूह की खुराक है, जब तक इसकी ऊर्जा हमें नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि आप तो कुछ खाया पिया ही नहीं हमने।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस दिन रेडियो ना सुनो आकाशवाणी के साथ न रहो लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ अपनापन छूट रहा है। तो कब से सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या?
4: सर आकाशवाणी अयोध्या तो मैं सुन रहा हूँ जब से मोबाइल ऐप पर आया है तब से सुन रहा हूँ।
0: वाह,
4: और इससे बड़ी बात ये है कि मैं बचपन से रेडियो का सुनने का मुझे शौक रहा है और मैं लगभग 50 सालों से रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और काफी आकाशवाणी से मुझे अनवाइट मिला और पुरस्कृत मैं हुआ हुआ और सम्मानित भी हुआ हूँ, और बहुत सारे आकाशवाणी के साथ जुड़ा रहता हूँ, तो आकाशवाणी से मुझे बहुत बेपना प्यार मिला है।
0: क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा आकाशवाणी अयोध्या का कौन सा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा?
4: सर आकाशवाणी का जो प्रोग्राम एक तो सुबह जो आता है इसमें दोपहर पे 1:30 पर आता है, कुछ
0: तुमने
4: कहा कार्यक्रम
0: जी,
4: ये कार्यक्रम मुझे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए है कि जब प्रोग्राम आपने आरंभ किया था तब सिर्फ नाम मत के ही मैसेज उसमें शामिल हुआ करते थे, और जैसे ही आपने इसको ओपन किया प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर
0: जी,
4: और आज इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, मुझे बड़ी गर्व हो रहा है ये बात कहते हुए कि हर कोने के श्रोता इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर प्रोग्राम में साथ निभाते हैं आपका।
0: बिल्कुल सही बात है, और कुछ तुमने कहा से कुछ तुमने कहा का सफर आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है।
4: इतने सारे सर फिर भी आप इतने सारे श्रोताओं को शामिल करता है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और आपको शुभकामना साथ के लिए भी देता हूँ कि आप सभी श्रोताओं को स्थान देते हैं प्रोग्राम।
0: बिल्कुल सही बात है, और एक चीज जानते हैं आकाशवाणी अयोध्या के जो प्रोग्राम है उसकी पहुंच कहां कहां तक है, इससे हमें इसी संदेशों से पता चलता है, कनाडा जैसे देशों से भी हमारे पास संदेश आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं।
4: पूरी दुनिया आपको सुनती है, जहां हिंदी भाषा के लोग रहते हैं वो बड़े गर्व के साथ अयोध्या का प्रोग्राम सुनकर अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल, और हम लोग गौरवशाली हैं कि आज 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं।
4: और हम भी इसमें शामिल है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी दूर बैठे हैं लेकिन

0: फिक्र मत कर रहे।
1: क्या बात है, बिल्कुल ये हमारा परिवार ही तो है, हमारे सभी श्रोता आप सभी सब परिवार ही तो है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: आपको जितने आपकी मीठी आवाज का जो आनंद ले रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी अयोध्या के प्रोग्राम सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयां, परमात्मा करे ये प्रोग्राम निरंतर जारी रहे। और सबसे बड़ी बात लक्ष्य ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के 90 साल का सफर तो पूरा किया, इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके सर, धन्यवाद।
2: हेलो,
3: हाँ नमस्कार, वंदे मातरम।
2: जी नमस्कार, वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी अयोध्या में। क्या नाम है
3: जी? मैं रामचंद्र माटी का काफी भाई बोल रहा हूँ, बनिया पारा धमकरी छत्तीसगढ़ राज्य से। मतलब
2: क्या बात,
3: आज आकाशवाणी के 33वें स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आप सभी को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, तीन हमारे वाक्य है, तीन ये जो वाक्य है यही हमारा मोटो है आकाशवाणी का। इन तीनों में सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या है, सूचना, शिक्षा या मनोरंजन?
3: सूचना जो है मिलती है, उसी के बाद हम उसको शिक्षा है या अपना स्वास्थ्य है या वार्ताएं, भेंट वार्ताएं सुनते हैं, उस सूचनाओं के आधार पे हमारा जीवन निर्वाह होता है। एक प्रकार का एक प्रकाश पुंज है आकाशवाणी जो है, वो हम तक पहुँचती है और हमारा दिल जो है, दिमाग जो है, खुलता है।
2: क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही है आकाशवाणी के लिए। और कितने सालों से आप जुड़े हैं आकाशवाणी अयोध्या से?
3: आकाशवाणी अयोध्या से तो हम तो यानी बचपन से, हमारे को जन्म घुट्टी जो है रेडियो की चलाई गई है, जब से और वाहन वाले रेडियो रहते थे ना,
2: चार
3: वाहन रहता था, उसमें लाइसेंस लगता था, तीन बैंड वाले जी, पुराने श्रोता है कहने मतलब
2: आपको बहुत पसंद है आकाशवाणी सुनना।
3: जी जी, और अभी तो आपका जो संदेश वगैरह SMS वगैरह इसमें ईमेल वगैरह हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया मोबाइल के आने से।
2: जी हाँ, ये तो एक सुविधा हो गई कि आप आकाशवाणी अयोध्या को कहीं पर भी सुन सकते हैं देश दुनिया में, नहीं तो एक रेंज तक ही सीमित था आकाशवाणी अयोध्या। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है हम सभी के लिए कि आकाशवाणी अयोध्या आज दूर दूर तक फैला हुआ है और लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, और आप जैसे श्रोता हमें छत्तीसगढ़ से कॉल भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर?
3: इस मौके पर ये जो आकाशवाणी का मामला चला है तो बहुत ही खुशी की बात है। यही कहूंगा जो आकाशवाणी होती है, भगवान वाणी करते हैं जिनको हम पूछते हैं, रखते हैं, और आप तो अयोध्या में साक्षात बैठे हुए भगवान है, उद्घोषक है, हम तक वाणी पहुंच रही है और हम उसको उनका अनुपालन कर रहे हैं।
2: चलिए, बहुत बहुत
3: मतलब आकाशवाणी जो है हमारे लिए आराध्य है, भगवान है, और उसका हम अनुपालन करते हैं, और सभी को उनसे जो सूचना शिक्षा मिलती है उसको हम सरोकार करते हैं अपने जीवन में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो आप भेंट वार्ता किसान वाणी में बताते हैं, सूचनाओं के माध्यम से ही होता है ना हमारे यहाँ जो भी आपको मिलता है।
2: चलिए, आपने आकाशवाणी को कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: ओके, शुभकामनाएं आपके सभी को, पूरे आकाशवाणी को, और वंदे मातरम, आइएगा धमतरी घूमने।
2: जी बिल्कुल, वंदे मातरम।
1: हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है?
4: चांद के पास सितारे बहुत है, चांद के पास सितारे बहुत है, मगर सितारों के पास चांद एक है, इससे आपके पास इतने तो बहुत है, पर मेरे पास आकाशवाणी अयोध्या रेडियो स्टेशन एक है।
1: नमस्ते, स्वागत है, अपना नाम तो बताइए।
4: अनु पांडे गोंडा से।
1: ओ अनु, क्या बात है अनु, प्रोग्राम सुनते हो आप तो बहुत पुराने, बहुत अच्छे, और मुझे लगता है कि आपके लिए अगर हम कह दें कि आप सुधी श्रोता हो आकाशवाणी अयोध्या के, तो सही है ना? कैसा लगा?
4: कि मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ आकाशवाणी अयोध्या को, सन 2003 से मैं आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ी हूँ।
1: क्या बात है, वाह। तो
4: लेकिन सर मुझको कार्यक्रम नहीं याद है क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी।
1: अच्छा, तब आप बहुत छोटे थे।
4: हाँ।
1: लेकिन ये तो है ना कि आकाशवाणी की जो धुन है वो आपके दिलो दिमाग दोनों जगह है।
4: हाँ, अगर आकाशवाणी अयोध्या की होता थी मुझे नाम मिला था, मेरी बीवी ने नाम दिया था रेडियो वाली, कोई भी आता था तो मैं ज्यादातर जब घर पर रहती थी तो मैं अंदर ही रहती थी, और अभी भी मैं अंदर ही रहती हूँ, तो जब भी रहती थी मेरी तबियत नहीं हुई थी तो मुझे बुलाती थी तो बोलती थी रेडियो वाली बाहर आ जा।
1: क्या बात है, तो रेडियो वाली का आज फोन लग गया है स्थापना दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाहते हो?
4: चांद ने कल रात ही आकाशवाणी अयोध्या को मुबारकबाद कह दिया, चांद ने कल रात ही मुबारकबाद कह दिया, सूरज ने भी एक सुबह निकल गई ही सलाम कर लिया, तो हमने भी कॉलिंग शो का इंतजार कर लिया, कल लगते ही आकाशवाणी अयोध्या को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद कह दिया।
1: क्या बात है, आपका अंदाज बधाई का बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा।
4: जी सर।
1: अच्छा एक चीज बताइए, जब आपने होश संभाल लिया, जब आप समझने लगे सब, तब आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आज की डेट का, सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा
4: अभी
1: इन दिनों, कौन सा प्रोग्राम
4: अभी सर मुझको लगता है सबसे अच्छा प्रोग्राम अयोध्या हो गया, गीत गुंजन हो गया, बातें आसपास की, और हेलो अयोध्या ये वाली।
1: क्या बात है, इतने ढेर सारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं, बस आप सभी श्रोताओं का यही तो प्यार है आकाशवाणी अयोध्या के साथ।
4: जी सर,

0: जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: सर मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे मौका मिला है आकाशवाणी अच्छा के साथ आने से दुकानदार देने के लिए बात करने के लिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मेरी कॉल लग गई सबसे बड़ी बात है।
0: क्या बात है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। फिर कॉल करिएगा, खूब ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने।
1: हेलो
0: जी आकाशवाणी, नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है?
1: मैं रिवांशी से बात कर रही हूँ, गोंडा से।
0: गोंडा से, अच्छा
1: हाँ।
0: तो स्थापना दिवस में कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हो आप?
1: सर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं रेडियो ना बचपन से सुन रही हूँ और आकाशवाणी अभी तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। मेरे किसी से बोलते हो कि मैं बचपन से सुन रही हूँ, तो बोलते हैं पालने से सुन रही हूँ, तो ये बात सच है कि आकाशवाणी अभी पालने से ही सुन रही हूँ और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है मुझे और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, अच्छा क्या करते हो आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ सर, और एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैं आकाशवाणी अध्ययन सुन रही थी, वहाँ पे मतलब एक बात आई थी, उसमें कुछ चीज बताया गया था, मैंने उसको सुना और उसके दूसरे दिन ही मेरा एग्जाम था, और उसने उस वार्ता को सुनी और मैं एग्जाम देने के लिए उसने उस वार्ता से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे।
0: वाह क्या बात है, यही
1: और 15 नंबर का ही पूरा पेपर था, 15 क्वेश्चन ही थे उसमें और 3 क्वेश्चन उस वार्ता से मिल गए थे मुझे।
0: क्या बात है, यानी आकाशवाणी अध्ययन को सुनने का आपको बहुत अच्छा फायदा मिला।
1: हाँ सर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आकाशवाणी अध्ययन हमेशा सुनती रहती हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ तभी मैं सुनती ही रहती हूँ।
0: वाह बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे।
1: और सबसे बड़ी चीज होती है पढ़ाई करती हूँ, रेडियो चालू कर देती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, इससे बाहर का शोर भी नहीं सुनाई देता है और रेडियो भी सुनती रहती है, पढ़ाई भी होती रहती है।
0: बहुत अच्छा है, आप जानते हो 17 जून 1993 को इस केंद्र का उद्घाटन हुआ था।
1: हाँ
0: और अब 33 वर्ष बीत चुके हैं, यानी आज 33वां गौरवशाली वर्ष है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और
1: सर मैं कुछ बोलना भी चाहूंगी।
0: जी बोल दीजिए।
1: आकाशवाणी अध्ययन से हमें प्यार बहुत है, क्यों ना करें हम आपसे इतना प्यार, क्योंकि आपके कार्यक्रमों का सुनने का हमें इंतजार बहुत है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा।
1: हर शाम इंतजार रहता है सर और हर सुबह इंतजार रहती है, और सोके सबसे पहले रेडियो ही खोलती हूँ कि देखती हूँ आरजे कौन आया है, और कभी कभी क्या होता है सो मिस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और जब कोई आरजे आया रहता है जिससे मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मतलब तो निकल गया है तो इसका ये होता है।
0: और पूरी आकाशवाणी टीम आज उत्सव मना रही है,
1: और मैं आकाशवाणी अध्ययन की पूरी टीम को और वहाँ के सभी आरजे को और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं आकाशवाणी अध्ययन टीम को, और मैं चाहती हूँ कि जितने आरजे हैं वो हमेशा ऐसे कार्यक्रम लोगों के लिए करते रहे।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर कॉल करिए। हेलो
2: नमस्कार सर, मैं गुजरात से बात कर रहा
0: हूँ। गुजरात से, और अपना नाम भी बताइए।
2: धीरज रबाई बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, और आपने मिलाया है आकाशवाणी अध्ययन का 73 76 80 40 90
2: अपना आकाशवाणी।
0: जी बिल्कुल, और आपको और, जी और आपको सभी श्रोताओं को खूब ढेर सारी बधाई
2: हमारी ओर से, आकाशवाणी अयोध्या परिवार एवं आपको और श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, और आकाशवाणी अयोध्या दुनिया भर में अपने प्रसारण के जरिए श्रोताओं से अपना मनोरंजन पीछे और ज्ञान भी पीछे।
0: क्या बात है, अच्छा कितने वक्त से सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या को?
2: सर हम सब होने आए 5 साल हो गए जब से आपने फोनिंग कार्यक्रम रात को देते थे पहले, हमने रात में भी फोन किया था, बात भी हुई थी, उसके बाद समय अनुसार हम जुटते थे आपसे।
0: क्या बात है, अच्छा क्या सोचते हैं भविष्य में, आप कैसा सोचते हैं कि आकाशवाणी अध्ययन और क्या हो सकता है और क्या बेहतर किया जा सकता है?
2: अभी में थोड़ा बहुत ऐसा आया था कि श्रोता रेडियो से थोड़े दूर हो गए थे, लेकिन वापिस वही श्रोता मोबाइल के ऐप से जरिए आकाशवाणी अयोध्या और स्टेशनों से जुड़े हैं। अभी पहले क्या ट्रांजिस्टर लेकर हम घूम सकते थे, लेकिन अभी यार कोई कार्यस्थल पर जाना है, कोई और जगह जाना है, तो मोबाइल से हम आकाशवाणी अयोध्या सुन सकते हैं और अपने मनपसंद कार्यक्रम और गाने सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, न्यूज ऑन एयर जब आया तो उसके बाद से श्रोता संख्या हमारी फिर से बढ़ गई, फिर हमारे सभी श्रोता जुड़ गए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि क्या फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं आकाशवाणी अध्ययन के लिए, कुछ सोचते हैं?
2: हम यही सोचते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या परिवार और भी बढ़े, और आप वैसे कार्यक्रम बढ़िया देते हैं और भी बढ़िया देंगे, हमें आशा है, और मेरे ख्याल से आकाशवाणी अयोध्या का जो भविष्य बहुत उज्ज्वल है और इसमें आपकी और श्रोताओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी सर।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आकाशवाणी अयोध्या के साथ जुड़े रहिए।
3: हेलो
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी धन्यवाद जी, सुरेश जगनेजा जलालाबाद पंजाब से जी।
3: जी सुरेश जी, तो आज आकाशवाणी का 33वां स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे?
2: जी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
3: आपको भी बहुत बहुत बधाई,
2: और हमारे आकाशवाणी अयोध्या के सभी प्रोग्राम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें
3: जी,
2: और हम कामना करेंगे।

0: हम सुनते रहें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें सुनने को मिले जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा।
1: जी बहुत ही अच्छा लगा आपका ये संदेश सुनकर। क्या भविष्य में आप कहना चाहेंगे आकाशवाणी अयोध्या को लेकर, या फिर आकाशवाणी अयोध्या भविष्य में कैसी हो श्रोताओं की नजर में, क्या ऐसा कुछ?
0: जी देखिए, पहली बात तो है ये हमारे प्रभु श्री राम जी की नगरी है
1: जी,
0: तो हम चाहते हैं ये सिलसिला चलता रहे दो ग्रामों का। और वैसे मैं तो आपसे जब से ये मोबाइल पे ऐप आई है तब से जुड़ा हूँ जी, क्योंकि रेडियो पे तो आवाज नहीं आती इतनी दूर
1: जी,
0: तो जब से जुड़ा हूँ प्रोग्राम सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं और कुछ सीखने को कुछ समझने का जो हमें मौका मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बोलूंगा जी ये हमारे प्रभु श्री राम जी की नगरी का बहुत प्यारा सा चैनल है
1: जी,
0: और इसे सभी श्रोता सुने और ध्यान से सुने और प्रोग्रामों को सुनकर उसकी प्रतिक्रिया भी दें
1: जी। चलिए, स्थापना दिवस की आपको और हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई, कॉल किया आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: देखा आपने, ये सिर्फ मैसेज नहीं, ये प्यार है, अपनापन है। दोस्तों, हर आवाज के पीछे पूरी टीम होती है, उद्घोषक, टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर।
1: बिल्कुल, कई बार श्रोता सिर्फ आवाज सुनते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देख पाते, जबकि हर कार्यक्रम घंटों की तैयारी का परिणाम होता है। और सच कहूँ तो कभी किसी उद्घोषक की मुस्कान में, कभी किसी तकनीशियन की मेहनत में बसती है ये प्यारी सी आकाशवाणी।
0: और अब कार्यक्रम में उनकी शुभकामनाएं जिनकी मेहनत छुपी होती है हर कार्यक्रम के पीछे। जी हाँ, जो पर्दे के पीछे से सारा काम करते हैं। तो आइए सुनते हैं इन शुभकामनाओं को।
2: मैं अनिल कुमार सिंह, सहायक निदेशक आकाशवाणी अयोध्या, कि जहाँ आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर चुका है और अयोध्या आकाशवाणी आज 33 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस बीच हम लोगों ने कई तरह के तकनीकी बदलाव देखे और साधारण इंस्ट्रूमेंट की जगह अब ऑनलाइन माध्यमों जैसे वेव OTT ऐप और न्यूज ऑन एयर ऐप पे भी आकाशवाणी सुना जा सकता है और विश्व स्तर पर सुना जा सकता है। हमारे कार्यक्रम सब जगह सुने भी जाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमें बराबर मिला करती हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, आकाशवाणी को भी बहुत बहुत बधाई।
3: मैं संजय धर द्विवेदी, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर अपने समस्त श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं जिनके कारण हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम यह स्थापना दिवस मना रहे हैं। साथ ही अपने साथ काम करने वाले कार्यालय के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूँ जिनके सहयोग से आकाशवाणी का ये सफर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।
4: प्रसार भारती आकाशवाणी के कार्यक्रम अनुभाग से मैं आशीष चतुर्वेदी, सहायक निदेशक आकाशवाणी अयोध्या, जिसकी शुरुआत आकाशवाणी फैजाबाद के रूप में 17 जून 1993 को हुई, उसकी एक लंबी यात्रा हो चुकी है और 2026 में 33 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद 34वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है आकाशवाणी अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या एक ऐसे क्षेत्र में है, अयोध्या नगरी में है, जो कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। भगवान राम की इस नगरी में आकाशवाणी सेवाएं हमारे विभिन्न श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। आसपास के क्षेत्रों में हमारा प्रसारण होता है और अब हमारे श्रोता केवल कुछ क्षेत्रों से नहीं, कुछ जिलों से नहीं, बल्कि पूरे विश्व से हमसे जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। हम आशा करते हैं कि आकाशवाणी की ये यात्रा निरंतर नए प्रतिमान, नए माइलस्टोन्स हासिल करेगी। आकाशवाणी की सभी टीम को, जिसमें हमारे RJs हैं, कैंपियर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, BAs हैं, जिनके माध्यम से आप तक ये प्रसारण पहुंचता है, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: मैं जयंत पटेल, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं और आकाशवाणी अयोध्या परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर। धन्यवाद।
0: आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं सरस्वती पाठक यहां पर कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्यरत हूं और सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जितना बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए हैं उतना हमारे लिए भी है, क्योंकि हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आवाज़ की इस दुनिया में कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से, और वो कार्यक्रम है नारी जगत, बाल जगत, अंगना, खेल खिलाड़ी और बातें आसपास की। तो आप सभी लोग आकाशवाणी अयोध्या को स्वयं सुने और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आकाशवाणी आपके द्वार तक बिना किसी कीमत को चुकाए वो खजाना लेकर के आता है। जो आप कहीं और जाएंगे तो उस खजाने को पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं और आकाशवाणी को स्वयं सुने, दूसरों को सुनाएं और जो भी कार्यक्रम आप तक सरकार

0: तक योजनाओं की सूचना पहुंचाने तक हो, चाहे आपके मनोरंजन की बात हो, एक स्वस्थ मनोरंजन, और फिर चाहे एक जो है हम जीवन जीते हैं अपना, एक घरेलू जीवन जीते हैं और जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम शायद दूसरों से सलाह के रूप में मांगते हैं, हमें सही सलाह मिलती है या गलत मिलती है, लेकिन आकाशवाणी आप तक जो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन लाता है वो एकदम सही और सटीक होता है। तो आप लोगों को एक बार पुनः बधाई, और आकाशवाणी अयोध्या को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आवाज की इस दुनिया से जुड़े रहिए।
1: मैं अभियांत्रिकी विभाग से सहायक अभियंता जितेंद्र सिंह, हम आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी हार्दिक अभिलाषा है और प्रार्थना है कि आने वाले समय में किसे अपरिमित ऊंचाइयां प्राप्त हों।
2: मैं विनोद कुमार चौधरी अभियांत्रिकी अनुभाग से आकाशवाणी फैजाबाद 17 जून 1993 से इसका शुभारंभ हुआ, अब इसको आकाशवाणी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। हमारे आकाशवाणी अयोध्या से विभिन्न कार्यक्रम, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन और बहुत सारी चीजें, ज्ञानवर्धक बातें यहां से प्रसारित की जाती हैं, और हमारी शुभकामना इसके आकाशवाणी अयोध्या के साथ। 17 जून को इसका यहां उद्घाटन हुआ था और 2 जुलाई 1993 को मैंने यहां ज्वाइन किया था। मेरी पहली ज्वाइनिंग यहीं पे हुई थी और 35 साल की नौकरी मैंने भी पूरी करी है और हमारा ये स्टेशन भी 33 साल पुराना है, और मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो आयु है वो अनंत रहे, आकाशवाणी हमारा ये अयोध्या बहुत आगे तक रहे, ये हमारी शुभकामना है।
3: मैं अवधेश कुमार यादव आकाशवाणी अयोध्या में तकनीकी सहयोग के माध्यम से आप लोगों तक प्रोग्राम पहुंचाता हूं, और आकाशवाणी के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
4: 1997 से कार्यरत उद्घोषक गिरिजेश निषाद जी, हाँ दोस्तों, बहुत समय से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोगों का प्यार हम सभी लोगों के साथ बना हुआ है। ऐसे में हम सभी सुनने वालों को शुभकामनाएं तो देना चाहेंगे ही, साथ ही हमारे आकाशवाणी परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
5: मैं सूरज सिंह आकाशवाणी अयोध्या में उद्घोषक के तौर पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2012 से मैं अपनी सेवाएं इसे दे रहा हूँ। वैसे तो आकाशवाणी इस बार अपने 33 वर्ष पूरे कर रहा है और हम चाहेंगे कि आकाशवाणी ऐसे ही अपनी सेवाएं आपको निरंतर देता रहे, अपनी अनंत ऊंचाइयां छुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
6: दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा सिंह युवाणी से, आपकी अपनी रेडियो दोस्त। दोस्तों, आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो को जहां 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वहां आकाशवाणी अयोध्या ने भी अपने 33 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जहां इतने सालों का सफर हमने तय किया है और उम्मीद है आगे आने वाले सालों में भी हम इसी तरह अपने आकाशवाणी अयोध्या को और आगे ले जाएंगे, साथ ही सफर में नए श्रोताओं से भी इसी तरह जुड़ते रहेंगे।
7: मैं चंद प्रकाश यादव आकाशवाणी की स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी जो है रेडियो सुने और सबको सुनाए।
8: श्रोता जन, हम वंदना सिंह आपके अपन अंगना वाली से की, और जैसे कि आप सभी जानत हो भैया बहनी लोग कि अपन ई आकाशवाणी अयोध्या 33 वर्ष पूरा कर चुका है, यह अवसर पर आप सभी के साथ ही आकाशवाणी अयोध्या का ढेर बधाई और शुभकामना। दो लाइन औरों कहा जाए थे, दुआ है कि आकाशवाणी अयोध्या ऐसे आगे बढ़त रहे, लोगन के दिलन का जोड़त रहे और अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रम से, अपने आवाज से हर घर का मुस्कान लावत रहे। एक बार फिर से 34वें स्थापना दिवस के ढेर बधाई और शुभकामनाएं।
9: पंचो जय हिंद। हम रामप्रीत निषाद जका आप गोवर्धन भैया के नाम से जानत हूं।
10: हम तिलक राम वर्मा जका हरि भैया के नाम से जाना जात है, जौन की कृषि जगत किसान बाड़ी कार्यक्रम में लेके हाजिर रही थे अपने सब कार्यक्रम।
9: बिल्कुल भैया, आज है 17 जून, यानी 17 जून 1993 के दिन आकाशवाणी फैजाबाद का स्थापना दिवस है, जैका हम सब आज आकाशवाणी अयोध्या के नाम से जानित है।
10: भैया, यहीं से जौनबा रेडियो के माध्यम से हम किसान भाई बहनन के खातिर जौनबा जनमानस है, यानी कि शिक्षा, संस्कार, अद्भुत योगदान, खेती किसानी संबंधित मेर मेर के जानकारी दीन जाते भैया।
9: बिल्कुल भैया, आज है 17 जून 2026, यानी आकाशवाणी के 33 वर्ष पूरा होते हैं।
10: हम हे भैया, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ है।
9: बिल्कुल भैया।
11: जी हाँ, आकाशवाणी की धड़कन अब पूरे विश्व में गूंज रही है। आज

0: दिन आभार व्यक्त करने का दिन है, उन आवाजों का, उन कलाकारों का, उन कर्मचारियों का और सबसे ज्यादा हमारे उन श्रोताओं का।
1: आज इस खास मौके पर हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उन लाखों श्रोताओं का जिनके प्यार, विश्वास और सहयोग के बिना ये सफर कभी पूरा नहीं हो सकता था। साथ ही आकाशवाणी अयोध्या से जुड़े सभी कलाकारों, साथी उद्घोषकों, तकनीशियनों और अधिकारियों को भी दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: आज आप सबके सहयोग से ही ये आवाज हर दिल तक पहुंच रही है। आकाशवाणी अयोध्या सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि हर श्रोता की अपनी आवाज बनकर उभर रहा है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके बिना ये सफर वाकई अधूरा था। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं स्वर्णिम संस्था का हिस्सा हूँ।
1: आकाशवाणी अयोध्या केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं, दिलों की आवाज हो। जुग जुग जियो, तुम्हारे सुर यूं ही गूंजते रहें, तुम्हारी महक यूं ही फैलती रहे।
0: इसी शुभकामना के साथ मैं नेहा
1: और मैं विवेकानंद
0: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या के 34वें स्थापना दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ही कार्यक्रम।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से मीराबाई का लिखा ये भजन जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गजल, जिसे लिखा अमीर खानफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे गजल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अजीज के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोजाना शाम 7:45 पर

विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोजाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत, गजल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पलाश सेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया एल्बम से ये गीत और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

बरसात की रात फिल्म से ये कवाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज आप सुन रहे थे। माफ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज आप सुन रहे थे। इस कवाली में साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत फरमा मलिक का के बोल और सोनी कुमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोजाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाए तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले दिन का छाया गीत जो पुनः प्रसारित होता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जग्गी सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजलीक ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज में सुनिए उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कमलेश सोनावाला ने और इसे हमने लिया है हवा के झोंकों में एल्बम से।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते 85 रुपया गायब हो जाते हैं। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बढ़ा है। फिर

0: ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब

0: हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशन हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशन से उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी, और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक

0: वायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
0: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने

0: कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
0: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
0: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब

0: हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए
0: जी,
1: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
0: जी?
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी?
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर लेते शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में

0: उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग

0: अभी आप सुन रहे थे ये देश गान 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग शुरू हो चुका है आपके आकाशवाणी केंद्र पर। पद्मा गिद्वानी के गाए हुए इस लोकगीत को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

तो हमरो बलम बोए दस एकड़ उखियार। और हमार सजनी, हे हमार सजनी, गौवा के मुख

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या।

0: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत, शारदा सिन्हा व साथियों की आवाज में गाया हुआ।

लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है।

श्रोताओं प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको पोस्टर के कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना है अपने विचार शायरी और कोट्स और आप सुनेंगे अपनी पसंद का गीत। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है कुछ तुमने कहा, प्रस्तुत करता है जयंत पटेल।

श्रोताओं, तमाम फरमाइशों के बीच हमारे पास विशेष फरमाइश आई है, जो आप समझ चुके होंगे आकाशवाणी के स्थापना वर्ष जो आज 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तमाम श्रोताओं ने बधाई दी है, तो आप सभी श्रोता बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्यार यूं ही बना रहे। आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 33 वर्ष का ये खूबसूरत सफर यूं ही चलता रहे, हम और आप यूं ही गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। आवाज के माध्यम से हमारी और आपकी ये पहचान, ये प्यार यूं ही कायम रहे। और शुरू होता है वो सफर जिसका आप सभी कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। सबसे पहली फरमाइश है प्रवीण श्रीमाली की फरमाइश है, खामोशी फिल्म का गाना वह सुनना चाहते हैं। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से इन्होंने फरमाइश भेजी है। यह इनकी पसंद का जो गीत है फिल्म खामोशी, आवाज लता मंगेशकर, गीत है गुलजार का और संगीत हेमंत कुमार का। तो आइए सुनते हैं।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित

और भी श्रोता हैं जो हमारे फेसबुक पेज पर जिन्होंने मैसेज भेजा है। सेफ वाटर सेफ लाइफ हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं ये मास्टर खिल्लू परवेज। ये संदेश हमेशा भेजते रहते हैं, आपका संदेश बहुत ही अच्छा है। और अगले श्रोता हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान। ताज अंसारी हैं आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं कपिल छिपा। और डाबकी रोड अकोला से हमें संदेश भेजा है सदानंद मंदूरकर ने। बस स्टैंड मानसा पंजाब से लिखा है जगदीश राय गर्ग ने, इन्होंने प्यार भरा नमस्कार भी लिखा है। तो आप सभी सुनने वालों को और आपको भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नोहाकर। और सतीश अनेजा हैं चंडीगढ़ से। नेहरू चौक पैठड़ से संदेश भेजा है डॉक्टर सुरेश जाधव ने। जालना शहर से सोमनाथ जाधव हैं। और कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जघेल ने लिखा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुविंदर सिंह जोड़ा। और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन। और मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है इनका, दिलशाद हुसैन हैं। और लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से भारती बघेल ने लिखा है। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना हैं। और कालका से शुभचंद्र बजाज। श्रोताओं यूं ही बने रहिए और मैसेज करते रहिए, अपने संदेश अच्छे अच्छे भेजते रहिए, अपने पसंद के गाने सुनते रहिए। कार्यक्रम है कुछ तुमने कहा।

संग्राम फिल्म के गाने की फरमाइश आई है, जिसको गाया है साधना सरगम ने। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है नदीम शमण ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आष्टी जिला मराठवाड़ा से सैयद यूनुस।

बागपत उत्तर प्रदेश से संदेश भेजा है संजय ढींगिया ने, और मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, अजीत कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हैं, और नंद किशोर घटे हैं बाला साहेब कारवा से। बदायूं से संदेश भेजा है धीरज कुमार गुप्ता ने, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, गांव बांडीवाला फाजिलका से आम बगड़िया, गांव लोखड़

ठाकुरा वाला से लिखा है स्वर्ण सिंह गिल ने, और सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़, कस्बा उघैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, नंदसागर तिवारी हैं शिवगढ़ गोसाईगंज अयोध्या से। इन्होंने लिखा है सभी आकाशवाणी परिवार के एंकर श्रोता को 33वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी इसी प्रकार से हम सभी श्रोताओं का मनोरंजन करती रहे, यही कामना है। तो आप सभी सुनने वालों को और आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से 33वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप यूं ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, यही हमारी आशा है, अभिलाषा है। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर हैं, उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन हैं, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हैं, जयपाल यादव ने संदेश भेजा है ग्राम लोहरे डी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से, और अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बालकरण वर्मा,

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में है मजबूर फिल्म का ये गाना। गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये खूबसूरत सा गाना।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800037222।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, ये आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हिना फिल्म का गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं, लता मंगेशकर की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से राधा नामदेव। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर हिना फिल्म का ये गाना।

इस कार्यक्रम का और भी श्रोता हिस्सा बने हुए हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से बड़ा बम चौक संजय मार्कंडे ने ये संदेश भेजा है, और पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ही हैं सुदर्शन शाह, और गंज डुंडवारा से हैं शमशुल कमर राही, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से संदेश भेजा है राजेश कुमार वर्मा ने। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, प्यार भरा नमस्कार भी लिखा है, तो आप सभी सुनने वालों को और आपको भी प्यार भरा नमस्कार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, और कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी बागपत से हैं आसिफ अली खान, लोहड़वा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, और नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पारसमणि रेडियो श्रोता से उन्होंने बनाया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से लिखा है बबलेश पवार ने, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से लिखा है खुदा बख्श खलीफा ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से लिखा है रवि कुमार राहुल ने, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा हैं, गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, ये वो श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने फेसबुक पेज पर अपने संदेश भेजे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत है होटल फिल्म से, आवाज दी है आशा भोसले और मनहर उदास ने, इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, तो आइए सुनते हैं सुरेश जायसवाल जी की पसंद पर होटल फिल्म का ये गाना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: जरा।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज हमारी पहचान।
2: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: आम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।

दिन राजा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाजार रोड मुंगीसियापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे हैं दीवाना फिल्म का ये गाना। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: प्रधानमंत्री के साथ मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
2: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
1: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
2: जी हाँ, और वो है योग।
1: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
2: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
2: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

श्रोताओं, कार्यक्रम का हिस्सा हमारे और भी श्रोता बने हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त हैं और अक्षय कॉलोनी गोदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर और संदीप मक्कड़ हैं कमलसानी पिंगवाला चौक गोरैया जालंधर से।

श्रोताओं, 33 वर्षों का यह सफर यूं ही चलता रहा, कुछ खट्टी मीठी यादों को संजोकर, और आगे भी ये खूबसूरत यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी, गुनगुनाते कुछ जानकारियों भरी बातों से, कुछ प्यार की बातें, कुछ पेड़ पक्षियों की चर्चाएं, कुछ खेती किसानी की महकती हुई सुगंध से रेडियो हमारा और आप सभी सुनने वालों का साथी बनकर रहा, जिसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार

दोस्त अब कार्यक्रम भी जा रहा है, कार्यक्रम कुछ तुमने कहा से, अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अफजाला को नमस्कार।

0: फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाज में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर।

DHYAKASHVANI@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

नी पाठक के गाए हुए इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश की नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर

0: सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख एशियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक एक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक युवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में युवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली

0: डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद

0: रही नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: सदियों की लहरों से गुजी जौन पावनवाड़ी, संस्कृति और संस्कार के संवाहक हमार आकाशवाणी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन धरा से आप सभी श्रोताओं, प्यारे सखियों का आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामना के साथ ही हाजिर है आपके रेडियो सखी वंदना। आप सभी स्वीकार करें हमार प्यार भरा नमस्कार। सखियों, स्थापना दिवस स्थापना से लेके आज तक ये केंद्र अवध के लोक संस्कृति, किसानों के बाद स्थानीय कला, ज्ञान, शिक्षा व महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम, भजन और जन जन के आवाज का रेडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंचाए हैं। आप सभी श्रोता के अटूट प्यार और सहयोग के ताई हृदय से आभार। एक रेडियो केंद्र तब तक फलत फूलत है जब तक वह के श्रोता उकरे साथ ही जुड़ा रहते। आज के इस शुभ अवसर पर हम अपने वह लाखों करोड़ों श्रोताओं का नमन करत भय धन्यवाद करित है जे चिट्ठी पाती लिख के, फोन कई के और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लगातार अपन प्यार दें। आप सबके बिना आकाशवाणी अयोध्या का ये सफर अधूरा रहा है। आपका प्यार और स्नेह ही हमारे सभी के असली ताकत है। एका ऐसे ही बनाए रखें और सुनत रहें आकाशवाणी अयोध्या के सारे कार्यक्रम। एक बार फिर से आकाशवाणी अयोध्या के स्थापना दिवस के ढेरों बधाई और शुभकामना। सखियों, हमार अवध के धरती हमेशा से हरी भरी और अन्न धन से भरपूर रही है, बोला आज पूरी दुनिया में पेड़ पौधन के कटाई और पानी के बर्बादी के नाते जमीन धीरे धीरे बंजर और मरुस्थल बनत जात है। यही के नाते लोगन में एकरे बदे जागरूकता पैदा करे के ताई हर साल 17 जून का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनावा जात है, जेके उद्देश्य है कि हमरे सभी जागरूक होई और अपनी माटी का बंजर होए से और पानी का सूखे से बचा सकी। धरती माटी रोए रही, पेड़ बिना खोए रही। सखियो, आजकल पानी के ऐसन किल्लत कहूं कहूं देखे के मिलत है कि देखो खेती किसानी तो दूर के बात है, लोगन का पिए के पानी के ताई भी तरसे पड़त है, जो हमरे आवे वाली पीढ़ी के ताई बहुत बड़ा खतरा है। हमें यह बात का कतई एकदम भूले के नहीं चाहिए कि अगर हम आज पेड़ पौधा न लगाओ, पानी न बचाओ, तो कल का हमारे लड़के बच्चे बंजर धरती पे कैसे रही हैं। पानी है तो प्राण है, पेड़न से ही जग के स्थान है। यही खातिर हमारे सभी का धरती का मरुस्थल होए से बचावे के ताई रुपया पैसा से ज्यादा अपनी सोच और थोड़ी से मेहनत की जरूरत है। जब हमारे सभी मिलके ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, वर्षा के पानी सहेज के राखब और धरती माँ हरियाली लौटाओ, तो हमार ई अवध के माटी फिर से सोना उगले। बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाओ करो सिंगार। हाँ सखियो, पानी की एक एक बूंद बचाओ और जंगलन का सुरक्षित राखब हमार धरती और हमार धर्म और कर्म दोनों है। यही नाते आज के दिन हमें सभी का इस संकल्प लेवे के चाहिए कि अपने ये अवध की भूमि का कभो सूखा और बंजर न हो दे, हरियाली से नाता जोड़ब, अपने धरती का बंजर बिल्कुल न छोड़ब। और बारी है अब देखो सखियो, एक साथ ही अब फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम का शामिल करेगा आप सबके फरमाइश के। तो सखियो, पहली फरमाइश है लोकगीत नए नए फैशन वाला गणेश कुमार सिंह की आवाज में सुनावे के। यह गीत सुने के फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा के। यही गीत के फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डेम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, दतरंगी

जटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेन मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा और सिद्ध बाबा भाटापारा छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा शिवम वैष्णव। गोरखपुर से यही गीत के फरमाइश आई है, रणजीत सिंह के भी यही गीत सुने के फरमाइश किए और साथ ही फरमाइश आई है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, आप कोनो भी गीत सुने के फरमाइश किए। और साथ ही फरमाइश आई है पुराना तालाब डुमराव से वजीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम भानो जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। आप भी कोनो भी गीत सुने के फरमाइश किए हैं तो आवे सब आप सबकी पसंद पे सुना जाए ये लोक गीत गणेश कुमार सिंह की आवाज़ में।

उम्मीद है कि गोने में सगरो श्रोताजन का नीक लाग हुई। और अब हम लेते हैं अगले गीत रघुवर की नैना रसीले, जो उनकी सहगान से है। यह गीत के फरमाइश आई है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनंदगांव से, छत्तीसगढ़ से। नारायण लाल साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, यही गीत की फरमाइश आई है। जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता देवी, रिसीवन नीलकंठ, चंद्रहास हीरेंद्र, संजीवन त्रिलोक कुमार साहू, सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, आप भी यही गीत सुनने के फरमाइश किए हैं। साथ ही ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्की, इसने ये लिखे हैं, इसने अभिनंदन भी लिखे हैं। और ग्राम गुदनुपुर पोस्ट जगदीशपुर बस्ती से अजीता रावत, जया रावत, आशीष रावत, अभय रावत, अकुल रावत, इनके मम्मी पापा, आप स्थापना दिवस के बधाई भी दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ ही फरमाइश आई है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, महिरा नूर, ये कोनो भी गीत सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव के, आप भी कोनो भी लोकगीत अवधि लोकगीत में नाम शामिल करे के कहे हैं। और हम अपने सभी श्रोता लगन से एक चीज़ और कहा चाहिए थे कि ये लोकगीतों के कार्यक्रम है, फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम, कृपया कह के जो है इवन फिल्मी गीत के नाम बिल्कुल न डालें, उनका हम शामिल ना करब। ये लिए आपका जो भी लोकगीत पसंद आवे वो लोकगीत के फरमाइश बोल लिख के भेजे हमें, तो आप हमें लोकगीतन का ही फरमाइश करें कि कहे से ये फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम है। साथ ही फरमाइश एक और आई है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, आप भी कोनो भी गीत में अपन नाम शामिल करे के फरमाइश किए हैं, तो आवे आप सबकी पसंद पे सुना जाए ई लोकगीत।

0: उम्मीद है कि सगो श्रोता जन का और प्यारी सखियन का एक और नई नीक लाग हुए कार्यक्रम का और आगे बढ़ाओ जाए लेकिन तनी रुक के
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड टीम की सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
3: QR कोड स्कैन करो 5,000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
7: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
8: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
9: जग घूमे थर जैसा न कोई।
7: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
8: तो देर क्यों जनाब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
10: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
11: थू सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
12: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
11: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
12: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
13: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: सखियों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और योग न केवल शरीर का स्वस्थ बनाओ थे बल्कि हमारे मन का भी शांत रखते है। यही लिए कही थे कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट का योगा जरूर करें। यह से तनाव कम होते है पाचन ठीक होते है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहा था। तो सबसे पहले हम सखियन से यही कहा चाहते कि नए कुछ तो कम से कम इतना जरूर करें कि सवेरे उठ के 1 या 2 गिलास पानी गुनगुना पानी जरूर पिए। रोज कम से कम 20 मिनट के योग प्राणायाम करें। भोजन में हरी सब्जी मौसमी फल और पर्याप्त पानी पिए। बाहरी खाना और तली भुनी चीजें से परहेज करें। रात

कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। तनाव दूर करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लें के अभ्यास करें चाहिए। सखियो देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के वास होते हैं। योग अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें, उसका अपने जीवन का जरूर हिस्सा बनाए, जिससे हमारा जीवन रोग मुक्त और खुशहाल हो सकत है। और एक साथ ही सखियो देखो, अब हम अपने अगले गीत के फरमाइश ली थे अपने कार्यक्रम में, जिके बोल है सिंगार कर बे सैया पूर्णिमा जी के आवाज में। एक फरमाइश आई है पॉलिटेक्निक अयोध्या से सरोज सिंह, सूर्यांश सिंह, लक्की सिंह, अंशिका सिंह, शिवानी सिंह, आकांक्षा, अक्षत, अनु सिंह, वाईबी सिंह और अभय सिंह, आदित्य सिंह। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाह, सादिया, आप कोनो भी गीत सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही फरमाइश आई है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से, आप भी कोनो भी गीत में जो है अपन नाम शामिल करें के फरमाइश किए हैं। साथ ही आई है फरमाइश श्री गंगानगर से नेकी लाम बेनीवाल के, आप भी कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से राज्य से रामचंद मखीजा काफिर भाई, आप भी कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। साथ ही जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमर राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून, आप भी कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। तो आवें आप सबकी पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत पूर्णिमा की आवाज़ में।

अगली गीत के फरमाइश आई है सिंदूर बंगाल के शारदा सिन्हा की आवाज माँ बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद मखीजा का फिर भाई श्रीमती सविता मखीजा बेबी स्वाति मखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवाड़ी पूरा मखीजा कुटुम्ब सब हृदय आभार व्यक्त करते हैं और कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए थे। लहो डडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत अर्जुन भारती बिटिया अंजलि नितिन जगमोहन सुधीर नूतन प्यारी पुती भुवनेश्वरी देवी आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए है। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। और अगली फरमाइश है लोक सुरमाला का प्रस्तुतकर्ता का नमस्कार करते गांव अरायन जिला श्री गंगानगर राजस्थान से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चालिया कोई भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। तो आवे आप और साथ ही फरमाइश आई है सेक्टर 8 कोचे से दीपक सैनी विजयश्री और अनुश्री सैनी आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। डुमराव बिहार से वजीउल्ला अंसारी आसमान नाज अंसारी और शबनम बानो बक्सर शहर से राज एस डी अंसारी बेबी अंसारी और दानिश अंसारी आप भी कोनो भी लोग ये सुने के फरमाइश किए हैं। जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा छत्तीसगढ़ रायगढ़ से साजिद खान

अगली लोकगीत की फरमाइश आई है, जो लोकगीत है अमवा महुआ के झूमे डरिया। यह गीत की फरमाइश आई है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, प्रीति वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। आप कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं। और शिवनाथ मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आप जो है यही गीत का फरमाइश किए हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, आप कोनो भी लोग सुने के फरमाइश किए हैं। कोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदरी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला अमिर, अमित जंघेल, शंकुर जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। आप भी कोनो भी लोकगीत सुने के फरमाइश किए हैं तो आवे आपके पसंद पे सुना जाए ये लोकगीत।

0: यही गोने के साथ देखो घड़ी भी इशारा करता है कि कार्यक्रम से विदा लेके समय हो गया है। तो यही वादा के साथ है कि अगले अगला कार्यक्रम में नीक नीक गीत गोने और जान का एक साथ फिर भेंट हुई। तब तक की ताई वंदना कर दे मती नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा

तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगना। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील

0: का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओ,
3: उस समय हिंदुस्तान के लोगों

0: पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
1: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जाबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओह, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
1: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चो, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,

0: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
1: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
2: खुद करनी होगी। सही कहे।
3: फिर क्या हुआ दादी?
4: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
4: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता, ऐसा चल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ
3: उसके बाद क्या हुआ?
4: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
7: नहीं होने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
4: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था। गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
4: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
8: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
9: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
4: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
10: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
4: सारी छावनी में खलबली मच गई।
11: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
4: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
12: अरेस्ट करो,
13: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
3: दादी जी, फिर क्या हुआ?
4: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, Pandey Cove, Thikhana Mangta Hai, Durant, Hospital Bheja!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तान कर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुर

0: बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
1: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
2: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
1: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम

0: नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
1: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
0: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
2: माँ
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
2: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
0: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
2: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
1: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
2: ये देखो दीदी, ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
0: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
1: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ?
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: चोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करो।
0: चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी
0: याद नहीं कहाँ रखी है।
4: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे पास को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: हाँ।
1: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
1: हेलो।
3: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा। पापा।
3: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
3: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
3: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
6: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
6: देखो ना सबकी जान बच गई।
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो

0: रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 MHz पर। सुनिए मुंबई केंद्र से प्रसारित केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम
6: जी।
5: और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
6: बिल्कुल,
5: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
6: बिल्कुल,
5: है ना।
6: बिल्कुल, डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती है। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता
5: है। सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
6: बिल्कुल,
5: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं।

0: लिखती है भाई, क्यों नहीं लिखती है?
1: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
0: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
1: लिखना चाहिए,
0: लिखना चाहिए बिल्कुल। हाँ ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है। तो
1: जी बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी, कि लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती है। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। बाकी सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
0: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
1: बहुत
0: है,
1: ईमानदारी से,
0: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखे, झूठ को झूठ लिखे कि ये गलत था,
1: तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
0: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई, मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था, और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
1: उसका
0: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है, लेकिन ना से तो बेहतर है कुछ। तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और
1: जी
0: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है, और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए, हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: नहीं लिखते
0: फिलहाल, गाना सुनना चाहिए।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं, लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक फिर तो ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताई नहीं जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर, राज को राज रहने,
1: राज को राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन अब वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास,
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, मुझे फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला, रसोई, मैनेजमेंट, 6 लोग, कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी जो आपने बुजुर्गों की बात

0: की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं। तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
1: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
0: तो
1: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
0: बिल्कुल, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और

छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो

0: गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी एक हमारे श्रोता हैं, जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके दर रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वो पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
1: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ,

0: प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखे, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोले बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है दिव्य भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं एक्चुअली मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: और विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय, और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे ब्लैक एंड व्हाइट?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके, तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है।
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी।

0: ही नहीं।
1: पढ़ाई में थे कैसे यार?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हो कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूँ मैं, पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है।
1: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया।
1: कौन सा?
0: पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्म का गाना है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए।

0: अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए. इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज. विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है. मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है. तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से. अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया. तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं. ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा.
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ. पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं. इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा. मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे. तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं. सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो. कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है. तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया. अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें है ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना. जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया. मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं. लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो

0: निकल गई, अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में देरी, अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में। अच्छा। ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कैसे मना करूं मैं अब? पर अगले दिन शाम को हम लोग गए तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ जगह कि कहाँ मैं, कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
1: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
1: कहाँ फंस गया।
0: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था, वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर एक डेढ़ महीने के बाद शो हुआ उसका और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा।
0: कुछ होना मैंने यार नहीं, इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था। हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी यहाँ पे, हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में। वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था। और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रेपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रेपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रेपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया।

0: किसी बात को लेकर तनातनी हो गई आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे, रिपेटरी ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, मैनेस्ट्री रिपेटरी का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया, पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है, तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे मतलब करें, कैसे क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज है, कहाँ पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
0: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं
1: जी।
0: और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपेट्री का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में, बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोटा भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका, जो रेपेट्री चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपए मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया

0: दुकानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3000 के बाद मैं 3000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 18 18000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18000 रुपए मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। कौशल साहब ने आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, पर जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का होता, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से फिर तनख्वाह हो गई 4000, तो 12 चौक 48 मैंने 48000 का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया, फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया। और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इम्पोर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेति साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं है काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है तो
1: विजय भाई अभी मौका है और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में तो वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था, तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था।
0: अच्छा।
1: अकाउंट्स की पार्ट टाइम,
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग

0: पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक दो तीन बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
1: अभी भी?
0: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास। ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है। तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
1: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं।
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहूं। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और बारह आने के बीच में आठ नौ साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फोन पे ना मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में। अब मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा शायद इनको पता होगा मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने। मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग क्या। एनीवे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि वो सॉरी चाय पियेंगे। मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आप वही करवाया उसी के
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया।

0: उतना समय उन्होंने दे के यार, उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है जबकि। मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में।
1: और उसी में आपने पहली बार कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया रघुजी वाला।
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें 2 फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बालन ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन 2 फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवा तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।

0: मानसून रीडिंग के बाद क्या चेंज, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीजें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आपका प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है बड़ा ऑफ बीट सी है सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी, जी।
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने में उसके लिए जा रहा हूँ, इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? आपने सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पे काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।

0: आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहाँ कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
1: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
0: मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
0: हाँ।
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बट आप फिल्में उठाएं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता, तो इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.9 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: ममार्ग अयोध्या, फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जीनत, और युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी एक ऐसी धरती पर रहते हैं जो हमें अन्न देती है, जल देती है, स्वच्छ हवा देती है और जीवन जीने के लिए आवश्यक हर संसाधन उपलब्ध कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यदि यही उपजाऊ धरती धीरे धीरे बंजर होने लगे तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा? साथियों, दुर्भाग्य से ये केवल कल्पना नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की वास्तविकता बनती जा रही है। बढ़ता हुआ तापमान, अनियमित वर्षा, जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हमारी धरती को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उत्पादकता खो रही है। इसी प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। इन्हीं गंभीर चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व की लगभग 40% भूमि किसी न किसी रूप में भूमि क्षरण से प्रभावित है और अरबों लोगों की आजीविका इससे प्रभावित हो रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ष 2026 की थीम है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइजेशन रिस्पेक्ट रीस्टोर, अर्थात चारागाहों को पहचानें, उनका सम्मान करें और उनका पुनर्स्थापन करें। साथियों, ये थीम हमें चारागाहों के महत्व को समझने का संदेश देती है। चारागाह केवल पशुओं के चारे का स्रोत नहीं बल्कि वे जैव विविधता, जल संरक्षण, कार्बन भंडारण और करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार भी हैं। इसलिए इनका संरक्षण और पुनर्स्थापन पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं विचारों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और यहाँ सुनते हैं ये गीत। खान साहब सास्वत सचदेव की आवाज है, गीत है नुसरत फतेह अली खान का, संगीत है सास्वत सचदेव का, फिल्म का नाम है धुरंधर द रिवेंज।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी।

दोस्तों अभी आपने सुना ये गीत खान साहब शाश्वत सचदेव की आवाज में, फिल्म का नाम था धुरंधर द रिवेंज। और अब बढ़ते हैं सेगमेंट व्यक्ति विशेष की ओर। साथियों, व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्कल मणि गोप बंधु दास जी की, जिन्हें उत्कल मणि यानी उड़ीसा का रत्न कहा जाता है। साथियों, 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी जिले के सुआंडो गांव में जन्मे गोपाल बंधु दास का जीवन संघर्ष, सेवा और त्याग की मिसाल है। बचपन में ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी और गोप बंधु ने कटक के रेवेंसा कॉलेज और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथियों, वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोप बंधु दास के सामने एक सफल और सुखद जीवन का रास्ता खुल गया था, लेकिन उन्होंने धन और प्रतिष्ठा के बजाय जनसेवा को चुना। उनका मानना था कि

0: किसी भी समाज की असली ताकत उसके शिक्षित और जागरूक नागरिक होते हैं। इसी सोच के साथ गोप बंधु जी ने सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, गोप बंधु जी का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। जब भी ओडिशा में बाढ़, अकाल या कोई प्राकृतिक आपदा आती तो वे सबसे पहले पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंच जाते थे। उन्होंने लोगों के दुख को अपना दुख माना और मानव सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। यही कारण था कि जनता उन्हें अपना सच्चा हितैषी मानती थी। वे एक निर्भीक पत्रकार भी थे। गोप बंधु दास जी ने समाज नामक समाचार पत्र की स्थापना की, जो जनता की आवाज बना। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, ब्रिटिश शासन की नीतियों और जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। गोप बंधु दास का लेखन लोगों में जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना का संचार करता था। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी गोप बंधु दास जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। दोस्तों, गोप बंधु दास ने लोगों में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। अंग्रेजी शासन के विरोध में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 17 जून 1928 को ये महान व्यक्तित्व इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। शिक्षा, सेवा, पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। साथियों, उत्कल मणि गोप बंधु दास का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या धन में नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के प्रयासों में होती है। तो मित्रों, ये था आज का व्यक्ति विशेष। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार होगा सेगमेंट खेल संसार।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डी फार्म, बी फार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है।

0: संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का साथियों युवाणी कार्यक्रम में, और बढ़ेंगे आगे खेल संसार की ओर, लेकिन उससे पहले यहाँ सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है हिचकी, गीतकार हैं राजशेखर, संगीत है जसरीन रॉयल का। आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म हिचकी से, अरिजीत सिंह की आवाज थी। और अब बढ़ते हैं सेगमेंट खेल संसार की ओर। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि भारत की सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। सृष्टि ने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में उप विजेता रहकर ये स्थान हासिल किया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन 11 जून से हो चुका है शुरू। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम्स भाग ले रही हैं। 11 जून को मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर विश्व कप में अभियान का आगाज किया। वहीं दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराया। आगे 14 जून को अमेरिका के न्यू जर्सी में ब्राजील ने ग्रुप सी के मैच में मोरक्को के साथ 1-1 से

ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं 16 जून को हुए मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। आगे बात करते हैं साथियों ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट की, जहां महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची ने पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। हॉकी की बात करें तो दोस्तों भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। 16 जून को न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से पराजित किया। वहीं क्रिकेट की बात करें तो साथियों आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आगाज 12 जून से हुआ। ये टूर्नामेंट एक महीने तक चलेगा और इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। विश्व कप के दौरान 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे, जिससे यह आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। 14 जून को भारत ने ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। भारत ने पाकिस्तान को 171 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रन पर ही सिमट गई। वहीं क्रिकेट में ही पुरुष टीम ने 13 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। तो साथियों ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें, और लीजिए यहाँ सुनते हैं ये गीत जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने, रचना है इंदिवर की और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है कलाकार।

0: साथियों, आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था कलाकार। अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि कल होगा युवा संवाद, जिसमें हमारी आपसे चर्चा का विषय होगा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग। जरूर कीजिएगा साझा अपने विचार हमारे साथ इस विषय पर। डायल करके हमारा टेलीफोन नंबर 73-76-80-40-90 हमारे लाइव फोनिंग प्रोग्राम युवा संवाद में। फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त जीनत को दें अनुमति। नमस्कार।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
3: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम बैंड 101.9 और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
5: RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां

0: भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सभी सुनियोलों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं ये किसानी गीत, जिसे गाया है हरि प्रसाद यादव और साथियों ने।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक और किसानी गीत जिसे अपनी आवाज दी है जयचंद सिंह और साथियों ने।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और भाई साहब क्या हाल है
2: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
2: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण

0: और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं वृक्षारोपण पर गाया हुआ ये गीत परमानंद यादव और साथियों की आवाज में।

सर्वानंद यादव और साथियों की आवाज में आपने सुना भी है वृक्षारोपण पर आधारित लोकगीत कार्यक्रम में। अब आपको सुनवाते हैं ये निर्गुण विजय कुमार सिंह और साथियों की आवाज है।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कार्यक्रम लोक संगीत के अंत में सुनते हैं ये पूर्वी गीत श्रीकांत वैश्य और साथियों की आवाज है।

श्रीकांत वैश्य और साथियों की आवाज में गाय पूर्वी गीत के साथ ही लोकगीतों का यह कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.9 पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent and global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: शाम सुहानी कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज है। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: 5.4 crore rupyakanam उत्पादनस्य अपेक्षया 10.15% यावत् प्रभावोत्पादिका वृद्धिः विंशतिः एकविंशतिः वित्तीय वर्षाच्च 10.1% अस्ति। मणिपुरे सुरक्षाबलैः उदग्रवाद विरोधाभियानानि तीव्रीकृत्य 3 उदग्रवादिनः निगडिताः। सहैव 26 अवैध भूमियानि गुहास्थानानि विनष्टानि। आरक्षिबलानुगुणं निगृहिताः उदग्रवादिनः प्रतिबंधित संघटनस्य पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए इत्यस्य सक्रिय सदस्याः सन्ति। ये पश्चिम इम्फाल मंडलात् गृहिताः। एते अनेकेषु हिंसाचार अपराधेषु संलिप्ताः आसन्। अपरपक्षे कामजोंग उख्लोल मंडलयोः सशस्त्र समूहैः उपयुज्यमानाः 26 अवैध गुहास्थानानि ध्वस्तीकृतानि। क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ नगरे स्पर्धा त्रयाणां श्रृंखलायाः द्वितीयायां एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अफगानिस्तान देशं विरुद्ध्य 1-0 अग्रस्थं भारतं 3+400 धावनांकानां लक्ष्यं अददात्, यत्र दलनायकेन शुभमन गिलेन 150+ ईशान किशनेन च 15+ रचितानि। इतः प्राग अफगानिस्तान देशः पणकं विजित्य प्रथमतया क्षेत्ररक्षणम् अचिनोत्। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रीय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केंद्रीय मानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य एवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन आतंकवादं विरुद्ध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 10.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः।
1: FM 101.9 पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं ICC महिला विश्व कप क्रिकेट मैच में आज।
2: अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम सुनिएगा, समय होगा 7:45 पर।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

होश। ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:15 पर। लेखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में, समय होता है सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। वंदे मातरम, एक जय घो।

आज के फनकार कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर। दोपहर 3 बजे बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम। शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनेगा पुरातत्व के तत्व। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजल अशोक। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी, फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन, वंदना खांडेकर के स्वर में वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: गज तत्वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर

उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

अभी आप श्री विनायक बोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर

आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी और बलबीर के स्वर में देशभक्ति गीत सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत की धुन बनाई थी उपेन अय्यर ने। फिल्म का नाम था नया दौर। अब सुनिए सेना पर आधारित गीत स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में। बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरिंदर साथी के।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित को अब सुनिए फिल्म संघर्ष में। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है।

0: और कहाँ पुडिंग।
1: तो क्या सभी मेज के मीनू कार्ड इसी तरह के हैं?
0: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मीनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
1: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
0: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
1: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
0: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
1: बाय बाय बैरा।
2: यस मैडम, कमिंग।
3: क्या खाइएगा?
1: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
3: ओके मैडम।
1: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
4: हेलो सर।
5: यस मैडम।
1: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
5: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
1: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
5: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं, मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
1: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
5: ओह वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके
1: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
5: यस।
1: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
5: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
1: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
5: ठीक है ठीक है।
1: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
5: मेज 12।
1: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
6: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से

0: क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
1: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
0: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
1: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
0: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, उठो पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
1: कहो।
0: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूंगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
1: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
0: वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
1: हा?
0: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
1: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर, और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
1: सारा।
0: वॉल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए, अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओ माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर कल जरूर आ जाना। वॉल्टर तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर कल जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना।
1: मेम साहब आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए उबले हुए अंडों के साथ।

0: सरसों की सब्जी।
1: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
0: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
1: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
0: ओके, जैसा आप कहोगे।
1: ओह वाल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो, लेकिन तुम कहाँ हो वाल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मन पसंद सब्जी खाते। वाल्टर, कौन है?
2: सारा।
1: वाल्टर, ओह वाल्टर, तुम सच्ची वाल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
2: यस मैडम।
1: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
2: ओके मैडम।
3: सारा।
1: वाल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
3: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
1: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
3: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
1: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
3: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
1: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
3: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
1: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
3: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
1: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वाल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
4: मेनू कार्ड। हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: तब तक के लिए मुझे
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत

0: को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने

0: प्रभु राम के दर्शन किए। वहां व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं।

0: स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। Headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, हम जानते हैं कि maritime trade की दुनिया में भारत के लाखों seafarers आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital.

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो, हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे 1943 में आई तकदीर, 1937 में आई जागीरदार और 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

0: क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठाकर देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बचाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता।
2: ये क्या गाना खुशी हो रही तुम दोनों?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूमगा कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूमगा कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960, बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुआवजा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Amigos, Tarango.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।